0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट ऑर्ग, यू आर अबाउट टू लिसन श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रास। The title is Sri Dakshinamurthy Pancharatna Stotram, presented by Dr. Tyagarajan, Raghuraman, Malola Kannan and Bhaktavatsalam. Thank you. Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

वारिवस्कृताय नमः, उच्चैर्घोषाय नमः, घोररूपाय नमः, पत्तीशाय नमः, पाशमोचकाय नमः, औषधीशाय नमः,

ग्रहाय नमः अग्रहाय नमः ग्रहाधाराय नमः ग्रहाकाराय नमः ग्रहेश्वराय नमः ग्रहकृते नमः ग्रहभिदे नमः ग्राहिणे नमः ग्रहाय नमः ग्रहविलक्षणाय नमः कल्पाकाराय नमः कल्पकर्त्रे नमः कल्पलक्षणाय नमः।

नमः विष्णुवल्लभाय नमः कमलासनकालाग्नये नमः कमलासनपूजिताय नमः कालाधीशाय नमः त्रिकालज्ञाय नमः दुष्टविग्रहवारकाय नमः नाट्यकर्त्रे नमः नटपराय नमः महानाट्यविशारदाय नमः विराड्रूपधराय नमः धीराय नमः वीराय नमः वृषभवाहनाय नमः वृषाङ्काय नमः वृषभाधीशाय नमः वृषात्मने नमः वृषभध्वजाय नमः महोन्नताय नमः महावक्ष्याय नमः महावीराय नमः महाभुजाय नमः महास्कन्धाय नमः महाग्रीवाय नमः महावक्त्राय नमः महच्छराय नमः महाहनवे नमः महादंष्ट्राय नमः महादोष्टाय नमः महोदराय नमः सुन्दरभ्रुवे नमः सुनयनाय नमः सुललाटाय नमः सुगन्धराय नमः सत्यवाक्याय नमः धर्मवेत्रे नमः सत्यज्ञाय नमः सत्यवित्तमाय नमः धर्मवते नमः धर्मनिपुणाय नमः धर्माय नमः धर्मप्रवर्तकाय नमः कृतज्ञाय नमः कृतकृत्यात्मने नमः कृत्यकृत्याय नमः कृतागमाय नमः कृत्यविदे नमः कृत्यविच्छ्रेष्ठाय नमः कृतज्ञप्रियकृत्तमाय नमः व्रतकृते नमः व्रतविच्छ्रेष्ठाय नमः व्रतविदुषे नमः महाव्रतिने नमः व्रतप्रियाय नमः व्रताकाराय नमः व्रतधाराय नमः व्रतेश्वराय नमः अतिरागिणे नमः वीतरागाय नमः रागहेतदे नमः विरागविदे नमः रागघ्ने नमः रागशमनाय नमः रागदाय नमः रागिरागविदे नमः विदुषे नमः विद्वत्तमाय नमः विद्वज्जनमानसंश्रयाय नमः विद्वज्जनाश्रयाय नमः विद्वज्जनसव्यप्राक्रमाय नमः नीतिकृते नमः नीतिविदे नमः नीतिप्रदात्रे नमः नीतिवित्प्रियाय नमः विनीतिवत्सलाय नमः नीतिस्वरूपाय नमः नीतिसंश्रयाय नमः क्रोधजिते नमः क्रोधिलाय नमः क्रोध

0: एतज्ञसाधस्थपरेते ददामियमावहाच्छेवधिञ्जातवेदाः
1: तन्वागन्ता यज्ञपातिर्वो अत्र तग्स्म जानीत परमेव्यो मन्
0: एतञ्जानाथ परमेव्यो ओमन् देवा असधस्था विदरूपमस्य यदा गच्छात्पथिभिर्देवयानैरिष्टा पूर्ते क्रोणवथा विरस्मै उद्बुध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहित्वमिष्टा पूर्ते सज्ञा सृजे।

0: इति विंशोऽध्यायः। ओम्
1: ओम् नमः शिवाय। डियर् लिसनर्स् आफ् शैवम् डाट् आर्ग्, दि नेक्स्ट् प्रोग्राम् इस् स्पिरिचुवल् डिस्कोर्स्. इन् दिस् यु आर् अबौट् टु लिसन् शिवानन्द लहरी इन् हिन्दी, प्रसेण्टेड् बै महामण्डलेश्वर् स्वामी श्री आत्मानन्द गिरिजी महाराज. थेङ्क् यू. ओम् नमः शिवाय. ओम् नमः शिवाय. डियर् लिसनर्स् आफ् शैवम् डाट् आर्ग्, दि नेक्स्ट् प्रोग्राम् इस् स्पिरिचुवल् डिस्कोर्स्. इन् दिस् यु आर् अबौट् टु लिसन् शिवानन्द लहरी इन् हिन्दी, प्रसेण्टेड् बै महामण्डलेश्वर् स्वामी श्री आत्मानन्द गिरिजी महाराज. थेङ्क् यू. ओम् नमः शिवाय.
2: भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्. आपके आभूषण अने आपके दैनदिनी के उपयोगी वस्तु के रूप में आप मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते. देखो बड़ा सुंदर भाव है यहां. अपने में बहुत से कमजोरियों को बता भी रहे हैं. मुझ में जड़ता है, मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि जड़ वस्तु से मैं तादात्म्य कर रहा हूं, इसलिए जड़ता है. फिर भी जिस जड़ वस्तु को आपने बड़े प्रेम से स्वीकार किया है, ऐसा जड़ तो मैं नहीं हूं. और ऐसे महान जड़ से जड़ वस्तु को भी आपने स्वीकार किया, तो फिर केवल मेरा तिरस्कार क्यों करते हो. भगवान शिव ने माला किसकी बनाई? गुलाब की, कमल के? प्रार्थना क्या करते हो? सृगपि निर्करोति परिकर. महिमने स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने क्या कहा? सृग माने माला. सृगपि कौन सी माला? सृगपि निर्करोति, मनुष्यों की खोपड़ी. मरने के बाद मशान घाट में पड़ी हुई मनुष्यों की जो खोपड़ी है, उन खोपड़ी समूह को भगवान शिव ने माला पहन बनाकर पहनी कि नहीं? अरे अभी तो मैं जिंदा हूं, मरे हुए खोपड़ी को तो तुमने माला बनाकर पहन रखी है, स्वीकार किया है, धारण किया है, अपने आभूषण के रूप में स्वीकार किया है, तो मेरा तिरस्कार फिर क्यों करते हो महाराज? मान लो कि मैं जड़ हूं, फिर भी तो उस खोपड़ी जैसा जड़ तो नहीं हूं. हूं बोलो, तुम अपने आप को मरे हुए मनुष्यों की खोपड़ी जैसा जड़ मानने को तैयार हो? जबकि वो जड़ खोपड़ी तुम्हारे खोपड़ी में है कि नहीं? फिर भी अपने आप को चेतन मानते हो कि नहीं? तो ऐसे जड़ को शिव स्वीकार कर सकते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? क्यों तिरस्कार करते हैं? शंकराचार्य जी कहते हैं कि फिर मुझे क्यों तिरस्कार किया? जड़ता. दूसरी बात है, त्रिशूल कैसा है शिव जी के हाथ में? तुम्हारे जैसा चेतना है उसमें? थोड़ा भी चेतनता है? बोलो. ये बात अलग है कि तुम शुद्ध चैतन्य नहीं हो, है ना? भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ये बात अलग है कि मैं शुद्ध चैतन्य नहीं हूं, मैं जड़ मिश्रित चैतन्य हूं, है ना? लेकिन वो त्रिशूल तो शुद्ध जड़ है, वो खोपड़ी तो शुद्ध जड़ है. अब शुद्ध जड़ त्रिशूल को अपने हाथ का आभूषण बनाकर धारण कर ली, और शुद्ध जड़ खोपड़ी को जब अपने माला बनाकर गंठे में धारण कर ली, मुझमें तो उनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा चैतन्य है. मुझे भी अपने शरीर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कोई न कोई आभूषण के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते हो महाराज? कहीं पहन लो ना महाराज, मुझे कहीं अपने आभूषणों के कहीं ना कहीं जोड़ लो ना महाराज. आप महिला हो, तो नाक में नथनी के रूप में पहन लो। किसे? जब सोने के और हीरा के बिल्कुल जड़ नथनी को नाक में पहन सकते हो तो उससे तो मैं बहुत ज्यादा चैतन्य हूं महाराज, मुझे कहीं ना कहीं पहन लो। एक कान में लटका लो, हाथ में कहीं अंगूठी बनाकर पहन लो। मैं अपने को कृतार्थ मानूंगा कि शिव ने मुझे स्वीकार किया है। हे परमात्मा, कहीं ना कहीं आभूषण के रूप में स्वीकार करो भाई, सर्वथा तिरस्कार तो मत करो। जड़ता पशुता, दूसरी बात है पशु, ये बात अलग है कि मैं बंधन में हूं, मैं बंधा हुआ हूं। आसापास जगद्दास, महाभारत में श्लोक आता है, आसापास जगद्दास। आशा रूपी पास से जो बंधा हुआ होता है वह जगत का दास होकर जीता है, और निराशी वो आशा रूपी पास में जो बंधा नहीं है वो निराशी है, आशा रहित है, अवनीपति, वो सम्राट हो जाता है। जिस दिन तुमने आशा छोड़ दी उस दिन तुम सम्राट हो जाओगे। आशा दास जगद्दास निराशी अवनीपति। और दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से एक गुरु का वाक्य है ये, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये वाक्य किसका है? दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से एक गुरु का वाक्य है, हैं? तुमको ज्ञान चाहिए तो वेश्या से भी मिल सकता है महाराज, तुम उसके योग्य तो बनो। कम से कम दत्तात्रेय तद योग्य थे, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर ली। आशा दास जगद्दास निराशी अवनीपति, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हम सब पशु इसलिए हैं क्योंकि हम आशा के बंधन से बंधे हुए, निराशी नहीं है। लेकिन मैं उस बिशप जैसा पशु तो नहीं हूं। भगवान शिव का वाहन क्या है? ऋषभ है, नंदी है। अरे मैं तो दो टांग वाला इंसान हूं, वो तो चार टांग वाला तिर्यक प्राणी है। मैं तिर्यक तो नहीं हूं, कम से कम नंदी तिर्यक प्राणी है। भगवान शिव ने दो पशुओं को धारण किया है, एक तो वाहन के रूप में नंदी को धारण किया है, अपनाया है, दूसरा मृगधारम, दो उंगलियों के बीच में एक मृग को धारण किया है। मृग चंचल मन का प्रतीक है, प्राणियों में सबसे ज्यादा चंचल प्राणी मृग है, और यह सिंबॉलिक है, मन अति चंचल है। और भगवान शिव ने ये दो उंगलियों के बीच में उस मृग को धारण किया है। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव का चार भुजा देख लो, एक हाथ में मृग है, मृग दंतिक त्वकृत सुंदराम मृगधरम, मृगधरम भी आता है ना। अरे भाई वो मृग जैसा पशु तो नहीं ना हूं मैं, नंदी जैसा पशु तो मैं नहीं हूं। ये बात अलग है कि मैं पूर्ण इंसान नहीं हूं, पशुता है, पांच प्रकार के पासुओं से मैं बंधा हूं। अब पशु ही सही, फिर भी जब आप नंदी को वाहन के रूप में स्वीकार कर सकते हो, मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो महाराज, मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, शिव हे चंद्रमौले, मुझे वैकल्पिक वाहन के रूप में रिजर्व में स्वीकार करो, शब्दार्थ समझ गए ना, वैकल्पिक महान, अल्टरनेट। अरे कदाचित वह नंदी जिस पर आप हमेशा सवारी करते हो कोई दिन बीमार हो गया तो मैं काम में आऊंगा, स्वीकार कर लो महाराज, मेरी सवारी कर लेना है? मुझे उतने लायक तो समझकर स्वीकार करो महाराज, मेरा सर्वथा तिरस्कार मत करो। जड़ता पशुता कलंकिता, तीसरी बात है कलंकी। हालांकि मुझमें वो कलंक नहीं है मेरे दृष्टि से, लेकिन आपके दृष्टि से जब आप देखते हैं कि मैं कलंकी हूं, फिर भी तिरस्कार करने योग्य तो नहीं। चंद्रमा जैसा गुरुपत्नी गामी कलंकी को तो अपने सिर में धारण किया है, मैं ऐसा गुरुपत्नी गामी तो नहीं ना हूं है? बोलो, इतना तो आप गारंटी कहोगे कि नहीं, छाती में हाथ रखकर है कहोगे कि नहीं मैं गुरुपत्नी गामी हूं? आप गुरुपत्नी गामी हैं? बोलो, चंद्रमा गुरुपत्नी गामी है कि नहीं? बोलो, प्रमाण है कि नहीं? और ऐसे कलंकी को जो देवताओं ने भी जिसकी निंदा की, शास्त्र ने निंदा की, और जिसके पद चलते बृहस्पति ने उसको राजयक्ष्म रोग से ग्रसित कर दिया, क्षय रोग से ग्रसित कर दिया, क्षय रोग राजयक्ष्म टीवी, चंद्रमा को टीवी हो गया है, जा आज के बाद तू क्षय रोग से ग्रसित हो जा। तो परिणाम क्या हुआ है? पूर्णिमा में इतना सुंदर दिखने वाला चंद्रमा प्रतिपदा से घटना शुरू होता है कि नहीं? बोलो, पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से घटना शुरू होता है कि नहीं? अब अमावस्या आते आते तो खत्म, फिर जिस जैसे तैसे वह बेचारा प्राण लेकर अमावस्या के प्रतिपदा से थोड़ा बढ़ने शुरू करता है, पातंजल का चवन परस खाना शुरू किया होगा, अमृत पाक खाना शुरू किया होगा, ये स्विच ऑफ करो ना मां। तो जैसे तैसे बढ़ता है तो फिर पूर्णिमा तक तो कुछ तंदुरुस्त होता है, ठीक ठाक होता है, तो फिर रोग लग जाता है, फिर क्षय होने लगता है। क्यों महाराज? उसको तो श्राप लगा है ना। श्राप क्यों दिया? कलंकी जिसको श्रद्धा से गुरु पत्नी मां की तरह पूजना चाहिए और उसी को उसने पत्नी की तरह भोगने शुरू किया, और ऐसे कलंकी को आपने मस्तक में धारण किया है, तो महाराज ऐसा चंद्रमा जैसा कलंकी तो मैं नहीं हूं। उसको मस्तक में धारण किया है तो मुझे कई चरणों में तो आश्रय दो। बोलो, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? ऐसे कलंकी को आप मस्तक में सिरमौर बनाकर धारण कर सकते हो तो मुझे कहीं चरण की जूती तो बना लो महाराज। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वम टेढ़ा चलना, मन में कुछ, वाणी में कुछ, कर्म में कुछ और, व्यवहार में इस प्रकार का भिन्नता लाना, यही जीवन की कुटिल चरता है, टेढ़ा चाल है, यही टेढ़ी चाल है आपकी। इस हिसाब से आप सर्प हैं कि नहीं? बोलो, हैं? सर्प सीधा चलता है कभी? सर्प हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सर्प की चाल कुटिल है, और आपके जीवन का चाल भी सर्प की सरा है कि नहीं? सर्प की तरह ही है ना। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना, पति कहता है कि सत्संग में मत जाना, और तुम सत्संग में गए बिना नहीं रह पाते हो। तो सत्संग में आ गए, पति ने पूछा कहां गई थी, बोले सब्जी लेने गई थी। कुटिल चारो हो गया कि नहीं, सर्प हो गए कि नहीं, तुम बोलो, बोलो ना, है ये तुम्हारी कुटिल चारता है कि नहीं, सर्प है कि नहीं। जीवन में कई बार ऐसा होता है भाई, करना ही पड़ता है, और आप लोग कुटिल चर करते ही हो, आप सर्प ही हो। पति से घर खर्चा के लिए पैसा लेते हो, और सभी पैसा घर खर्चा में न लगाकर उसमें से कुछ बचाकर साधु ब्राह्मण को देते हो, कुटिल चर है कि नहीं बोलो, ये तुम्हारी सर्पपना है कि नहीं। पति कहा कि इतना इतने रुपया तुमने पहले लिया था, उसका हिसाब कहां गया? तो तुम कहोगे अरे भाई इतनी महंगी सब्जी है, इतना महंगा तेल है, इतनी महंगे दूध है, ये घर चलाना होता है इतने पैसे से क्या होता है, फिर भी ये कहो कि मैं कैसे घर चला रही हूं। उसमें तुम ये कहोगे दूध महंगा है, सब्जी महंगी है, ये सब कहते हुए साधु संतों को भी देना जरूरी है, कहोगे? बोलो, उस वाक्य को तो तुम छुपाए रखोगे उसको, जबकि देती जरूर हो, तुम कहती नहीं हो ना। यही तो कुटिल चरता है। क्या ये ईमानदारी है, सीधी चरण है तुम्हारा? मनुष्य अन्यत बचस्य अन्यत कर्मण्यन्यत, यही कुटिल चरता। फिर भी महाराज मैं उस जहर से भरे हुए सर्प की तरह था नहीं। ये बात अलग है कि मेरे में अमृत नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज सर्प जैसा जहर भरा हुआ तो नहीं हूं। ये बात अलग है कि मेरा जीवन सीधा नहीं है, सरल नहीं है, व्यवहार में कई बार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर भी सर्प जैसा तो नहीं हूं। और ऐसे सर्प को भी अपने जब धारण कर लिए, सिर में जटा बांधने के लिए उसका प्रयोग किया, गले में माला बना के पहन ली, हाथ में बाजू बंद के रूप में रख ली, कमर में दंती तक बाघ के चमड़ी को, हाथी के चमड़े को बांधने के लिए बेल्ट के रूप में प्रयोग कर ली। उस सर्प का तो अपने जीवन ही कृतार्थ कर दिया महाराज, लेकिन आज तक मुझे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? महाराज कहीं ना कहीं कुछ तो प्रयोग करो मुझे। अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणम्, मुझमें सारे दोष होने पर भी आपके आभरण, आपके आभूषणों के, आपके उपयोगी के पात्र के रूप में मुझे स्वीकार कर लो, कहीं ना कहीं तो मैं काम आऊंगा, सर्वथा परित्याग नहीं करना महाराज। बड़ा सुंदर भाव है इस श्लोक में, भगवान से ये प्रार्थना की गई है, आपके द्वारा मैं तिरस्कृत न हूं, मेरा आप तिरस्कार नहीं करना, जिस रूप में प्रयोग करना चाहो कर लो, लेकिन आपके उपयोगी वस्तु के रूप में कम से कम मुझे स्वीकार करो। इसलिए शिव भुजंग स्तोत्रम काश्मीरी शैव जगद्धर भट्ट जी ने एक जगह लिखा यही भाव को, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है जगद्धर भट्ट ने, इस ऐसे ऐसे भाव को व्यक्त किया। पशुम वेत्सि चिन्माम तमेवाधिरूढ़, पशुम वेत्सि चिन्माम तमेवाधिरूढ़ कलंकीति वा मूर्धनि धत्से तमेव, द्विजिह्वा पुनः सोपि ते कंठभूषा त्वदंगीकृता सर्व सर्वेपि धन्या। भाव वही है, हे शिवा आप मुझे पशु मानते हो तो वाहन बनाकर मेरी सवारी करो,

तो यदि मुझे सर्प ही मानते हो, दुई जिह्वे मानते हो, एक महात्मा बता रहे थे ना, महाराज हम तो इंसान है, दुई जिह्वे कहां से? बोले तुम्हारे दो जिह्वा है, मंदिर में खड़े होते हो तो भगवान को कहते हो तुम्हें माता चपिता तुम्हें वा। अब पत्नी जब नाराज होती है तो उसके सामने खड़े होकर कहते हो तुम्हें वो माता चपिता तुम्हें वा। दो जिह्वा हो गया कि नहीं, बोलो? अरे भगवान को तुम्हें माता कहा तो पत्नी को क्यों कहते हो, और पत्नी को कहते हो तो भगवान को क्यों कहते हो? एक ही जीव से बात करो ना भाई, दो जिह्वा। महात्मा ऐसी व्याख्या कर रहे थे। तो भी तो महाराज कंठभूषा आपके गले के आभूषण तो बन सकता हूं। तदंगी कृता, आपने उन लोगों को अंगीकार करके स्वीकार करके वे सब धन्य हो गए। तो वे सब जब धन्य हो सकते हैं तो मुझे भी स्वीकार करो महाराज। हाँ, अशुचिम यदि माम अनुमन्य से किमिदम मूर्ति कपाल दामते, मुझे अशुचि अपवित्र मानते हो तो फिर चंद्रमा को सिर में क्यों धारण किया है? क्या वो चंद्रमा मेरे से ज्यादा शुद्ध है और उसको धारण कर सकते हो तो मुझे क्यों नहीं धारण कर सकते? यही भक्ति का भाव है। भक्त भगवान के साथ इस प्रकार के विनोद करता है, भरोसे से भगवान के साथ संवाद करता है, जरूर मुझे भगवान स्वीकार करेंगे। अहम यादृश, हे महाराज मैं जैसा भी हूं लेकिन मैं तुम्हारा हूं, मैं जैसा भी हूं लेकिन मैं, इतने आप ख्याल रखो, मैं तुम्हारा। जो वस्तु अपनी होती है वो जैसा भी होता है ना उसको स्वीकार करना पड़ता है, पड़ता है कि नहीं बोलो? हमारी समस्या बड़ी जटिल होती है। जब बेटे की शादी करनी होती है तो लड़की को खोजने चलते हैं और लड़कियों को खोजते हैं, उसका फोटो देखते हैं, उनके बात करते हैं, उसके बायोडाटा मंगाते हैं और हजार कमी कमजोरी को खोजते हुए उसका रिजेक्ट करते हैं, करते हैं कि नहीं? वो काली है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं, वो लंबी है, ठीक नहीं है, वो मोटी है, ठीक नहीं है, वो दुबली पतली है, ठीक नहीं है। हजार दोष देखकर हम उसका रिजेक्ट करते हैं। अब जब किसी एक को पसंद करके शादी कर लेते हैं, शादी कर लेने के बाद लंगड़ी हो जाती है तो क्या परित्याग करते हो? शादी के बाद उसका तिरस्कार करते हो? ये लंगड़ी हो गई अब तिरस्कार करे, परित्याग करते हो? बोलो, ये लंगड़ी हो गई अब, किसी कारण से अंधी हो गई तो तिरस्कार करोगे? बोलो ना। अब किसी कारण से थायराइड के चलते बड़ी भारी मोटी हो गई, अब तिरस्कार करोगे? होता है ना, थायराइड के कारण अचानक शरीर में चर्बी चढ़ने लग जाता है, बड़े बड़े मोटे हो जाते हैं, अब परित्याग करोगे उसका? जैसा भी हो, अपना होने के बाद तो जैसा भी हो स्वीकार करना पड़ता है, और करते हैं, तिरस्कार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अपना है, पति अपना जैसा भी हो स्वीकार करेंगे।

0: बेटा अपना जैसा भी हो तिरस्कार नहीं करते हैं, स्वीकार करते हैं। मां अपनी जैसी भी हो स्वीकार करते हैं, बाप अपना जैसा भी हो स्वीकार करते हैं। अपना हो गया कि स्वीकार किया, और जब तक अपना नहीं होता है तभी तक हजार नखरे हैं, कोई न कोई बहाना खोजे वो परित्याग करे, बहाना खोजे और परित्याग करे। तो भक्त कहता है भगवान से कि महाराज मैं तुम्हारा हूं। शंकराचार्य जी का वो षटपदी याद कर लो, हैं? सामुद्रोही तरंग न क्वचन तारंगो समुद्र, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न मामकी नस्तो। हे नाथ, तत्व दृष्टि से वेदांत दृष्टि से जब हम विचार करते हैं महावाक्यों को आधार बनाकर, तब तुम्हारे में और मेरे में रंच मात्र भी भेद सिद्ध नहीं होता। भेद का अपगम तत्त्वमसि जब महावाक्य के द्वारा, उपनिषद के महावाक्यों के द्वारा विचार करते हैं, आपके और मेरे बारे में हम विचार करते हैं, तो तुम्हारा मेरा कोई भेद भिन्न सिद्ध ही नहीं होता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहम हम सह सत्य भी भेद अपगम, फिर भी तब अहम मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं हो। तब अहम न मामकी नस्तम, मैं तुम्हारा हूं लेकिन तुम मेरे नहीं हो। अर्थात मेरे होने न होने में आप पर निर्भर करता है, इसलिए मैं तुम्हारा हूं। लेकिन तुम्हारे होने में मेरे होने न होने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं हूं तो भी तुम हो, और मैं न रहूं तो भी तुम, इसलिए तुम्हारे होने में मुझ पर निर्भर नहीं करता। मिट्टी को होने में घड़े पर निर्भर नहीं है, लेकिन घड़े को होने में मिट्टी पर निर्भर है। घड़ा ये कह रहा है, हे मिट्टी मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं हो। क्यों? मेरे न होने पर भी तुम रहते हो। जब घड़ा नहीं बना था तो मिट्टी थी कि नहीं? घड़े के अस्तित्व की जरूरत नहीं है मिट्टी के अस्तित्व के लिए, लेकिन घड़े के अस्तित्व के लिए पहले मिट्टी का अस्तित्व होना जरूरी। इसी तरह परमात्मा के अस्तित्व के लिए जीवात्मा का अस्तित्व होना जरूरी नहीं है, लेकिन जीवात्मा के अस्तित्व के लिए परमात्मा के अस्तित्व के बिना जीवात्मा का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सामुद्रोही तरंग न क्वचन तारंगो समुद्र, जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वं च नास्ति मयि देव, यदि अस्ति राजमौले भवदावरणस्य नास्मि किं पात्रम्। इस श्लोक में दो भाव स्पष्ट दिखता है। एक तो भक्त ये पूरी तरह विश्वस्त है इस श्लोक के भाव से, भक्त पूरी तरह विश्वस्त है कि मैं भगवान का हूं, मैं जैसा भी हूं भगवान मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे, इस पर विश्वस्त है वो भक्त। दूसरी बात भगवान के साथ वह अधिकार पूर्वक जोर लगाकर ये कह रहा है, महाराज मुझे आप हर हालत में स्वीकार करना ही पड़ेगा, मेरे से गए गुजरों को स्वीकार किया है तो मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो, बोलो हैं? मेरे से गए गुजरों को स्वीकार किया है, प्रमाण क्या है? मैंने तुमसे गए गुजरों को स्वीकार किया है, बोले ये प्रमाण है। नंदी मेरे से गया गुजरा है, मृगा मेरे से गया गुजरा है, वह पशु जाति के मैं इंसान जाति का हूं, वो चतुष्पाद है मैं द्विपाद हूं, लो जी तो मुझे क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, करना ही पड़ेगा। पहले भगवान के साथ इस तरह तुम जब आग्रह करोगे तो भगवान को बाध्य होकर स्वीकार करने में, बात तो तू ठीक कह रहा है, चंद्रमा को स्वीकार कर रहे हो तो मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो, सर्प को स्वीकार करते हो तो मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो, तो ये दो चार उदाहरण देकर तुम आग्रह करोगे तो भगवान को झक मार कर स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं, मसान घाट में भी जाकर तुम्हें स्वीकार करेंगे भाई, जहां भी स्वीकार करेंगे, तब तुम्हें भगवान शिव तुम्हारी जब चिता में तुम्हारे बेटे ले जाकर तुमको जलाएंगे, राख बना देंगे, तो भगवान कहेंगे इसने कहा था मुझे तिरस्कार नहीं करना, तो उसी राख को अपने शरीर में लपेटने शुरू करेंगे, बोलो करेंगे कि नहीं। जब तुम ये कहोगे महाराज किसी हालत में भी मुझे मेरा परित्याग नहीं करना, तो अग्नि से जलने से राख बनने से बच गया जो खोपड़ी, इसने कहा था मेरा तिरस्कार नहीं करना, तो उसी को उठाकर गले में माला बनाकर पहन लेंगे। ये तो हो गया जड़ शरीर की बात। अब तुम कदाचित अपनी पूर्व वासना, अपनी पूर्व कामना, अपने कर्मों के चलते, तुम्हें नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं मुझे, मैं यदि भूत प्रेत बना मरने के बाद, है ना, भूत प्रेत में किससे बनता हूं, मेरी वासना से, मेरे कर्मों से, मेरे संस्कारों से, दूषित वासना, दूषित कर्म, दूषित व्यवहार से मैं भूत प्रेत बनूंगा तो भी भगवान मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे इतना विश्वास है भाई मैं भूत भी बनूंगा तो परमात्मा स्वीकार करेंगे अपने गण के रूप में, अपने गण के रूप में स्वीकार करेंगे, प्रेत भी बनूंगा सहचरा प्रमथगण भूतगण भूतगणादि सेवितम। आहा भक्तो, इंसान बनकर भगवान की सेवा करने का मौका नहीं भी मिला तो चिंता नहीं करना, भूत प्रेत बनोगे सेवा करने का मौका जरूर मिलेगा, ये भगवान की कृपा है, हो तिरस्कार नहीं करेंगे। भगवान का स्मरण करो, भगवान का होकर जियो, बस तो जिस अवस्था में भी तुम रहोगे भगवान स्वीकार करेंगे, परित्याग नहीं करेंगे। अब जब भूत बनकर भगवान के शरीर में तेल लगाने को मिलेगा क्या मजा आएगा महाराज, है, जब भूत प्रेत बनकर भगवान के चरण को धोने को मौका मिलेगा, हाहा क्या कहना, केवट को शूद्र जाति के होकर नदी के किनारे में है, केवट बनकर शूद्र जाति का होकर रहने से क्या फर्क पड़ा, भगवान राम का साक्षात चरण को धोने को मिल गया है। और हम ब्राह्मण होकर कर क्या लिया, बोलो कर क्या लिया। तो भगवान का भक्त होना जरूरी है, भगवान के आश्रय में रहना जरूरी है, भगवान परित्याग नहीं करेंगे, ये विश्वास के साथ शंकराचार्य जी ये श्लोक कह रहे हैं। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वं च नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्। जड़ता पशुता कलंकिता अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्धिया वरिवसि तुम सुलभ प्रसन्न मूर्ति अगणित फलदायक प्रभुर मे जगदधिको हृदि राजशेखरोस्ति। अरहसि रहसि, चाहे एकांत में हो चाहे भीड़ में हो, अरहसि माने भीड़, रहस्य माने एकांत। भगवान का भजन, भगवान का ध्यान चाहे एकांत में करो चाहे भीड़ में करो, अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्धिया। स्वतंत्र बुद्धिया माने वृत्ति में, तुम्हारी बुद्धि वृत्ति में विजातीय वस्तु का प्रवेश न हो, स्वतंत्र बुद्धि। सजातीय प्रवाह हो, विजातीय विषय का प्रवेश न हो। विषय का प्रवेश हो गया तो पारतंत्र बुद्धि हो गई, स्वतंत्र बुद्धि। स्वतंत्र बुद्धि माने विषय से अविद्ध, विषय विद्ध बुद्धि पारतंत्र बुद्धि, विषय अविद्ध बुद्धि स्वतंत्र बुद्धि। बुद्धि जब स्वतंत्र होती है, विषय अविद्ध होती है, तब चाहे एकांत हो चाहे भीड़ भड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्धिया वरिवसि तुम सुलभ प्रसन्न मूर्ति। वरिवसिता ध्यान, सेवा पूजा, देख लो वरिवसित, वरिवस्या, वरिवस्या माने पूजा आराधना, स्वतंत्र सुलभ प्रसन्न मूर्ति। तो स्वतंत्र बुद्धि होगी तो भगवान की जो प्रसन्न मूर्ति है वह सर्वत्र सुलभ होगी, चाहे भीड़ हो चाहे एकांत हो। बुद्धि जब विषय से विद्ध होती है तो एकांत में भी भगवान की प्रसन्न मूर्ति सुलभ नहीं होगा, वह दुर्लभ होगा। इसलिए बुद्धि विषय विद्ध न होकर शुद्ध होना चाहिए। इसलिए आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम क्रियम, यही तो है सुलभ। अगणित फलदायक प्रभुर मे, परमात्मा मेरे लिए अगणित फलदायक, कल्प वृक्ष हो जाएंगे। परमात्मा तो मेरे लिए कल्प वृक्ष है, अगणित, मैं जो चाहूंगा जितना चाहूंगा वो फल देने की क्षमता वाले हैं, सामर्थ्यता वाले हैं। मैं प्रभु, मेरे प्रभु मुझे अगणित फलदायक, जगत अधिको हृदि, जगत से अधिक है वो। जगत तो बहुत कम है, बहुत छोटा है, बहुत क्षुद्र है, और मेरे प्रभु मेरे परमात्मा जगत अधिको, और ऐसे परमात्मा हृदि, मेरे ही हृदय में हमेशा सुलभ हो जाएंगे। राजसे करो अस्ति, राजाओं का भी सिर मोर भगवान शिव मेरे लिए सर्वत्र सुलभ होंगे। ये ध्यान की भक्ति के साथ साथ ध्यान की प्रक्रिया है, उसी ध्यान को अब आगे 71वें श्लोक के द्वारा भगवान शंकराचार्य जी और स्पष्ट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन पुष्पदंस शिव महिम्न स्तोत्र प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय

0: ధిక్కాలాజనవచిన్న చిన్నమాత్రమూర్తయే స్వానుభూతే కాయ నమః శాంతాయ తేజసే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హాయ్ భగవాన్, शिव का गुणगान करके अपने वाणी और कानों को पवित्र करते हैं. शिव महिमन में बहुत सुंदर लिखा है, महिमना पारंते परम विदुषो यद्य सदृश स्तुतिर्ब्रह्मादीनाम अपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्व स्वमिति परिणामावधिगृणन् మమాపేష స్తోత్రే హర నిరపవాద పరికర. తే మహిమా, ఆపకి జో మహిమా హై వో అపరంపార హై, ఉస్కో కోయి గా నహీ సక్తా, కోయి నహీ గా సక్తా. ఫిర్ హమ్ కైసే గాన కర్ సక్తే హై? అగర్ ఆపకా గాన హమ్ నహీ కర్ సక్తే తో ఫిర్ బ్రహ్మా ఆది కి స్తుతి భీ వ్యర్థ హో గయి. బాత్ ఏసీ నహీ ప్రభో, हम तो आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते, लेकिन आपके गुणों का गान करके हम अपनी वाणी को पवित्र कर सकते हैं. तो भगवान शिव की अनंत महिमा है, और उन भगवान शिव की अनंत महिमा का गुणानुवाद करके इस श्रावण मास में हम अपनी वाणी को, हम अपने कानों को पवित्र करते हैं. भगवान भाष्यकार ने कहा, प्रातः स्मरामि भवभीति हरम सुरेशम. हम प्रातःकाल स्मरण करें, किसका स्मरण करें? जो हमें संसार से पार लेकर के जाए, जो हमें संसार से पार लेकर के जाए उसका हम स्मरण करें. और जो संसार से पार ले जाने वाले हैं वो तो शिव ही हैं, क्योंकि सारी विद्याएं उन्हीं से ही आई हुई हैं. गुरु हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं. उपनिषद में उनके लिए लिखा है, आपने बहुत बार उस उपनिषद का प्रवचन सुना है, वहां लिखा है, नांतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नौ भयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम. एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः. कैसे हैं शिव? बड़ी विलक्षण बात की उपनिषद के ऋषि ने, बड़ी विलक्षण बात की. कहते हैं वो अग्राह्य हैं, अदृश्य हैं. अदृश्य माने जिनको देखा ना जा सके. देखना किससे है? इन नेत्रों से. क्या हम नेत्रों से देख सकते हैं? नेत्रों से तो हम अपने आप को भी नहीं देख सकते, इसलिए वो अदृश्य हैं. शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के आने वाले नहीं हैं, इसलिए उनका एक एक विशेषण दिया, अशब्दम स्पर्शम रूप मरसम. जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से परे है, उनसे बहुत परे है. तो अदृश्य हैं, वह देखने में नहीं आते हैं, इंद्रियों से परे हैं. जब अदृश्य हैं तो उनका व्यवहार कैसे करें हम? ग्रहण नहीं होते तो अग्राह्य हैं. जो अदृश्य है वह अग्राह्य है, हम उनको पकड़ नहीं सकते, न मन से पकड़ सकते हैं न बुद्धि से पकड़ सकते हैं, हम उनको पकड़ नहीं सकते. तो फिर क्या करें? बात तो ऐसा ही है, यन मनुषा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यन मनसा न मनुते। मन के द्वारा हम उस परात्पर शिव का मनन नहीं कर सकते। ये नाहुर मनोमतम अपितु जिसकी विद्यमानता में जिसकी शक्ति को लेकर के ये मन मनन कर रहा है। तो मन का ही तो आश्रय है पकड़ने के लिए हमारे पास, और आश्रय क्या है? वही एक आश्रय है। तो कैसे पकड़े उसको? ये देखो ऋषियों की वाणी है, बड़ी महिमावान है। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मयाः सूक्ष्मदर्शी भी। कहते हो अदृश्य है लेकिन फिर भी दृश्यते। दोनों ही उपनिषद वचन है। एक तरफ कहा अदृश्यम, ये भी उपनिषद वचन है मांडू के उपनिषद का। एक तरफ कहा दृश्यते, दिखाई देता है। तो यहां जो अदृश्यम का अर्थ है वह इंद्रियातीत, और जो दृश्यते शब्द का प्रयोग किया वह अनुभूति गम्य है। वह अनुभूति में आ जाते हैं। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मयाः सूक्ष्मदर्शी भी। दिखाई दे जाते हैं, ऐसी बात नहीं दिखाई नहीं देते, दिखाई तो देते हैं लेकिन अनुभवैक गम्य है। वो अनुभवैक गम्य है, उनको हम पकड़ नहीं सकते। अनुभव में है तो अदृश्यम अग्राह्यम, ग्रहण नहीं होते वो। महाराज ग्रहण नहीं होते तो अव्यवहार्यम, व्यवहार्य भी नहीं है। हाँ, व्यवहार्य भी नहीं है तो अचिंत्यम, तो उनका चिंतन करना भी मुश्किल है। चिंतन का विषय नहीं है, स्वयं चेतन है। स्वयं चेतन है, चिंतन का विषय नहीं है। देखो कितना आनंद आ रहा है हमारे बहुत पुराने सत्संगी स्वामी त्यागमूर्ति जी महाराज के शिष्य हैं, तो गणेशानंद जी महाराज के, स्वयं चेतन है और स्वयं स्वयं का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए अचिंत्यम कहा। तो अचिंत्यम है तो महाराज उसको कहें कैसे? कहा अव्यपदेश्यम, उनका व्यपदेश माने कथन भी नहीं हो सकता। ये शिव हैं, ये औपनिषदिक शिव हैं, औपनिषदिक शिव, ये वैदिक शिव हैं, वेद के देवता हैं ये, महाराज उपनिषदों में है ये, उनका कथन भी नहीं हो सकता। एकात्म प्रत्यय सारम, आहा संसार सारम, संसार सार है वो, संसार के एकमात्र सार वे ही हैं। प्रपंचोपशमम, प्रपंच है नहीं वहां पर लेकिन सारा प्रपंच उन्हीं में ही है। आकाश में प्रपंच है, आकाश में प्रपंच नहीं है, क्योंकि आकाश निर्लेप है। आकाश निर्लेप है फिर भी आकाश में प्रपंच है, और जो निर्लेप है सूक्ष्म है निरावयव है उसमें प्रपंच कैसा? गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही रुद्राष्टकम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बड़ी सुंदर बात कही। तो वहां का चिदाकाश माकाश वासम, देखो ये आकाश है, ये आकाश है। नमामि शमीशान, ईशम और ईशानम दोनों भगवान के नाम हैं। सर्वश्रेष्ठा, उपनिषद में कहा कि शिव क्या है? संपूर्ण संसार के अनुशासन करने वाले हैं, अधिष्ठाता हैं, इसलिए इनका नाम ईशान है। ईशान इसीलिए है, ईशान सर्व विद्यानाम, संपूर्ण विद्याओं के स्वामी हैं, इसलिए ईशान है। और ईश नमामीशम ईशान, ईशम ईशानम नमामि। ईश क्यों है? सर्वव्यापक है। उपनिषद में आप पढ़ते हैं ना, ईशा वास्यम इदम। हाँ, ईशा माने ईश्वर के द्वारा, इट प्रवेश ने धातु है जिससे ईश शब्द बनता है। तो जो सर्वत्र प्रवेश किया हुआ है, सर्वत्र व्यापक है, जो सर्वव्यापक है, ऐसे जो शिव हैं वो ईश हैं। ईश तो वही है संपूर्ण अच्छा आप देखिए शब्दकोश है ना, डिक्शनरी आप शब्दकोश में देखिए, चाहे अमरकोश हो, चाहे शब्द कल्पद्रुम हो, संस्कृत के शब्दकोश जो प्राचीन है, उसमें ईश्वर शब्द केवल और केवल शिवजी के लिए ही आया है। ईश्वर शब्द शिवजी के ही पर्यायवाची में आया है, आप देखिए, क्योंकि ये ईश हैं, यही अकेले सारे संसार के स्वामी हैं। और ईशान हैं, स्वामी तो हैं लेकिन शासन भी करने वाले यही हैं, यही स्वामी हैं और यही संपूर्ण संसार का शासन करने वाले हैं। अगर ये शासन ना करे तो कितना हाल हो जाए महाराज, बहुत बुरा हाल हो जाए अगर ये शासन ना करें तो। इसलिए तो इनका एक नाम महेश्वर है। सभी लोग डरते हैं इनसे। ये रुद्र है, रुद्र माने जो बहुत उग्र हो, है ना। हाँ, बहुत उग्र हो। इनका एक नाम, अष्टमूर्तियों में इनकी एक मूर्ति उग्र भी है, अष्टमूर्तियों में इनकी एक मूर्ति उग्र भी है। आठ मूर्तियां शिव सर्व ईशान उग्र भीम, ये आठ मूर्तियों में से एक मूर्ति इनकी उग्र है। उग्र का अर्थ है हाँ, जो अपराध करता है, अपराध करता है वो इनसे बच नहीं सकता, इनसे नहीं बच सकता, क्योंकि ये ईशान है, शासन करने वाले हैं संपूर्ण विश्व पर। नमामीशम ईशान निर्वाण रूपम, और ये निर्वाण है। निर्वाण जानते किसे कहते हैं? ये तो उपनिषद वचन है, उपनिषद का टेक्निकल वर्ड है ये। वाण कहते हैं शरीर को, वाण किसे कहते हैं? जो वाण से रहित है। हमारे कितने शरीर हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, संस्कार मात्र होता है, वासना मात्र है ना। सूक्ष्म शरीर 17 अवयवों से मिलकर के होता है, और क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचा अधम। अधम है या उत्तम है इस पर हम बात नहीं करते, लेकिन पंच तत्वों से मिला हुआ यह शरीर है। और संस्कार मात्र है कारण शरीर, और कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है। संस्कार है तो जन्म है, संस्कार है तो मृत्यु है, संस्कार है तो सुख है, और संस्कार है तो, लेकिन वो तो निर्वाण है क्योंकि न उनका जन्म है और न उनकी मृत्यु है। संस्कार नहीं है वहां, अविद्या नहीं है वहां, अविद्या का ही परिणाम संस्कार है, अविद्या का ही परिणाम जन्म और मरण है, अविद्या का परिणाम ही परिच्छिन्नता है। वो तो अधिपति है माया के, मायांतु प्रकृतिम विद्यात मायिनम तु महेश्वरम। माया प्रकृति है और माया भी महेश्वर है। जैसे जादूगर को दिखाने वाला, जादू दिखाने वाला दूसरे को तो भ्रम में डालता है लेकिन स्वयं भ्रमित। गुजरात में वलसाड में एक बार एक बहुत जादूगर लड़की थी उसको बुलाया, लड़की बड़ा नाम था उसका, वो स्वयं ही चल के आई। हमारे एक मित्र हैं स्वामी विद्यानंद सरस्वती, बरुमाल में उनका बहुत बड़ा आश्रम है, बड़ा काम कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में, और अष्ट धातु की उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, पंचमुखी महादेव की। तो वहां कार्यक्रम था, वहां हम गए हुए थे, तो महाराज वहां बुलाए एक जादूगरनी को, तो उसने कहा देखो अब बात ऐसी है, मेरे पास कुछ है नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन इतनी बात है जो मैं बोलूंगी वही आप सुनोगे, और जो मैं दिखाऊंगी वही आप, बस इतनी बात है मेरे पास। अब आप अपनी इच्छा से नहीं देख सकते, न अपनी इच्छा सुन सकते हैं, जो मैं बोलूंगी वही सुनोगे और जो मैं दिखाऊंगी। तो महाराज उसने क्या किया, एक उसके ऊपर टेबल पर एक आदमी को लिटा दिया, और आदमी को लिटा करके हम तो सबसे आगे बैठे हुए थे, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, हमारे सामने टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इतना ही नहीं किया, उसने पैर इधर है, धड़ बीच में है, सिर इधर है, उसने कहा पैरों को हिलाओ तो पैर हिल रहे, खाली पैर, केवल पैर ही हिल रहे हैं। अगर महाराज सच में टुकड़े कर दिए जाएं तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। बस टुकड़े सच में नहीं होते, हमारे मन को मोहित कर दिया जाता है, मन को मोहित कर दिया जाता है, और ये जो सभी के मन को एक साथ मोहित कर दिया जाता है, मास मेस्मोरिज्म। तो जो वो दिखाना चाहती वही हम देख पाते, दूसरा कुछ नहीं देख पाते, बिल्कुल अलग अलग टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक रुमाल लिया, रुमाल को ऐसे किया और ऐसे हटाया तो कबूतर, केवल रुमाल सबको हाथ में दिखाते हुए। तो मायावी माया से मोहित नहीं होता, जो माया में देखने वाले हैं, माया में फंस रहे हैं, वही माया से मोहित होते, उसे मालूम है वो क्या कर रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है इसने रुमाल का कबूतर बना दिया, हमें तो ऐसा लग रहा है इसने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हमें लग रहा है। बचपन में तो गांव गांव में आते थे खेल दिखाने वाले, अब तो वो कम हो गए गांव में आने वाले। तो हम देखा एक बार, छोटे थे, बच्चे थे, तो एक कांच का इतना मोटा गोला, कांच का गोला, और उसने ऐसे उछाला एक तीसरे आदमी के पास, दूर जाकर खड़े होकर कहने लगे इसने मेरा गोला लिया है। वो ले लिया, कहीं है ही नहीं, तो महाराज उसको यहां हाथ लगाया, ऐसे गोला निकाल दिया। ये क्या है कि ये केवल जादू है, सच में नहीं है। एक बार क्या है, क्या एक आम का पौधा बनाया उसने, इतना अपने आप बन गया, फिर उसमें फल भी लगा दिया। ये बचपन की घटनाएं हमने देखी जादू की। तो ये जादू है, जादू, लेकिन जादूगर जादू से कभी भी मोहित उसको आश्चर्य नहीं होता। ये तो महेश्वर है, माया, माया तो प्रकृति है, और प्रकृति माया है, लेकिन इस माया के जो अधिपति हैं वो भगवान शिव हैं। मायांतु प्रकृतिम विद्यात मायिनम तु महेश्वरम, इसलिए माया उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, इसलिए वो देह से परे हैं, निर्वाण रूपम, वो तो निर्वाण है महाराज। अच्छा, एक निर्वाण का अर्थ मोक्ष भी होता है, कहते हैं निर्वाण प्राप्त कर गए, कहते हैं ना ये निर्वाण शब्द बौद्धों में और जैनियों में फिर बाद में बहुत प्रचलित हुआ। तो निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर गए, मोक्ष कब मिलेगा, जब पहले अज्ञान होगा। तो क्या कभी अज्ञान था उनमें, नहीं, जो सदा सदा ही शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, विभु है वो। देखिए दो शब्द एक साथ दिए हैं तुलसीदास जी ने, एक विभु है और एक व्यापक है। तो विभु में व्यापक में क्या है, विभु व्यापक को ही कहते हैं, लेकिन विभु क्यों कहा, विशेषण भवतीति विभु। हमारा जन्म हुआ, हमारे जनक हैं, उनके भी जनक है, उनके भी जनक हैं, उनके भी जनक है। कहां तक चले महाराज, कहां तक चले? हमें वहीं तक जाना होगा जिसका कोई जनक नहीं होगा, बस उसी को ही विभु कहते हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, ये उपनिषदिक शिव है, ये सारे के सारे शिव के ही मंत्र बोल रहा हूं मैं उपनिषद के। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समष्टाभ्यधिकं च दृश्यते, उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, उससे कोई पैदा भी नहीं हो रहा, और फिर ये संसार कहां से आया? देखिए यही वेदांत है, उससे उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उससे कोई पैदा भी नहीं हुआ, तो संसार कहां से आया? कहने लगे महाराज ये तो उसकी अपनी लीला है, अपने ही अंदर से अपने ही आप प्रकट कर दिया है, केवल एक प्रतीति है, प्रतीति प्रतीति है। मैंने स्वप्न लिया, स्वप्न में मेरी सारी की सारी सृष्टि आ गई, उसका मेटेरियल कॉज क्या था, इफिशियंट कॉज क्या था, क्या तो उसका निमित्त कारण था, क्या उसका उपादान कारण था, क्या उसका साधारण कारण था, क्या वह पैदा हुआ, क्या वह नष्ट होता है? अरे जो पैदा ही नहीं हुआ उसका नाश कैसा? आदा वंते च यन्नास्ति मध्यपेपी तत्तथा, जो आदि में नहीं है, जो अंत में नहीं है, मध्य में भी है नहीं, दिखाई दे रहा है बस, आदि में नहीं है, मध्य में भी नहीं है, अंत में नहीं है, तो मध्य में भी वो है नहीं, बस यही शिव की शिवता है, यही शिव की शिवता है। तो इसी को ही कहते हैं विभु, विशेषेण भवतीति विभु, विभुम व्यापकम, और व्यापक है, जर्रे जर्रे में मौजूद है, पर नजर आता नहीं, बिना योग साधना के वह किसी को, अरे जर्रे जर्रे में मौजूद नहीं है, जर्रा जर्रा उसमें मौजूद है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य, अरे आस्य शिवस्य, अस्य शंभो महेश्वरस्य वा, सब कुछ इस शिव के अंदर है, और ये शिव सबके बाहर भी है, क्योंकि एकांशेन स्थितम जगत, सारा का सारा जगत एक अंश में ही ठहरा हुआ है। वो अंश कितना बड़ा होगा उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापक है, व्यापक की व्याख्या कैसे करें, बस समझने और समझाने के लिए है। अच्छा, एक छोटा सा इंस्टिंक्ट, चींटी से भी छोटा, बहुत छोटा, मेरे उंगली के एक भाग पर बैठ गया, उसकी दृष्टि में वो मेरे कितने अंश में बैठा है, और फिर वो तो निरवयव है और व्यापक है। हमें तो अपने समझने के लिए एक बात कही है कि ये संसार उसके एक अंश में स्थित है, वह संसार में है और संसार से बाहर भी है, लेकिन संसार उससे बाहर, वह संसार में है और संसार से बाहर है, लेकिन संसार उससे बाहर नहीं है, इसलिए विभु भी है और व्यापक भी है। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म। आहा, देखो एक ब्रह्मसूत्र है, आप तो ब्रह्मसूत्र यहां तो सब जानते ही हैं। ब्रह्मसूत्र है शास्त्रीय नित्वात्, ब्रह्म का कारण कहां है, ब्रह्म का घर कहां है, कहां रहता है ब्रह्म, वेद में कहां रहता है, वेद में क्यों रहता है? कहने लगे हम तो अपनी दृष्टि से कहते हैं कि हमें उसका पता वहीं से ही चलता है, हमें पता वहीं से ही चलता है। नहीं तो यस्य निश्वसितम वेदा यो वेदेभ्योखिलम जगत निर्ममे तमहम वंदे, जिसके श्वास से सारे वेद प्रकट हुए हैं और जिसने वेद से सारे संसार को बनाया है, ऐसे विद्या के अधिपति भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन पता तो हमें वेद से ही चलता है, इसलिए परमात्मा का रेजिडेंस कहां है? वेद है। किसकी दृष्टि से? हमारी दृष्टि से। क्यों? क्योंकि जब भी ब्रह्म क्या है, कैसा है, क्या स्वरूप है उसका, कैसे उसकी प्राप्ति होगी, ये हमें वेद से ही पता चलता है।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ பிரத்யக் போதானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: ஆர் மை ஜப் பச்பன் மே காசி மே கயா தா, சமய டூண்ட்ராஜ் கே बगल में महाराज जी, एक ही बार उनको दर्शन किया मैं, पहली बार. अरे एक सज्जन और कुछ लोग बैठे हुए थे उनके सामने, तो एक सज्जन ने महाराज जी से प्रश्न किया कि श्राद्ध करते हैं तो वो जीव कहां रहता है, क्या रहता है, वो उनको पहुंचता है क्या. तो महाराज जी ने, मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, तो लेकिन बहुत श्रद्धा से सुन रहा था. तो उन्होंने बोला कि अवश्य श्राद्ध करना चाहिए, और उनको पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है ये आपको कहने का नहीं है. जब वहां होगा तब ना उनको पहुंचेंगे, नहीं होगा तो आपको लौट के आएगा. उन्होंने बोला, जब आप पत्र लिखते हैं और एड्रेस, वो तो पता नहीं है आप कहां लिखते हैं, कहां लिखते, कौन सा एड्रेस है, वो व्यक्ति वहां है कि नहीं है, लेकिन लिखते हैं कि नहीं, तो फिर वहां व्यक्ति होंगे तो वहां पहुंच जाएगा उनको. यदि नहीं होगा क्या होगा. यही उन्होंने, उनका पहली बार दर्शन हुआ, और उनका जो ग्रंथ है और उनसे मैं थोड़ी बहुत परिचित हूं, और महाराज जी के वचन का मैं जब भी जहां प्रवचन करता हूं एक वचन तो कम से कम कहना चाहता हूं उनके बारे में. और आपने आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े बड़े संत लोगों का भी सभा मैं संचालन किया था, वहां भी मैं महाराज जी का नाम एक बार तो लेता हूं. ये हमारे आश्रम के मंथली मैगजीन है, वो एक विश्वमीमांसा, उसका तेलुगु में प्रचारित होता है, वो रमन महर्षि ने उसका नाम रखा है. हमारे गुरुजी का गुरुजी रमन महर्षि है, तो उन्होंने रमन महर्षि के पास जाके पूछा कि एक मैगजीन रखना है, उनको नाम रखिए. तो उन्होंने बोला विश्वमीमांसा, विश्व माने प्रपंच है, भगवान है विश्वम विष्णु षटकार है, और मीमांसा माने चर्चा है. तो उस विश्व मीमांसा में मैं संपादक हूं उसका, तो उसमें भी कभी संदर्भ आवे तो महाराज जी का नाम तो उल्लेख करता ही. ये महाराज जी का तो यहां आने का अवसर ऐसा मेरे को संप्राप्त हो रहा है कुछ कई सालों से. तो एक प्रभादेवी में एक छोटा सा अपना अपने महाराज जी का एक संस्था है, तो श्रावण मास में यहां मुझे रहना पड़ता है. तो पहले मैं एक साल पहले ही मेरा निश्चित होता है कि पहले दिन का यहां अवश्य आना ही है, तो सब संतों को सुनेंगे, मैं सुनने के लिए आ रहा हूं. ओम हरि ओम.
2: बहुत सुंदर स्वामी हरितीर्थ जी, अनेक वर्षों से आते थे अपने कार्यक्रम में, और इस वर्ष मैंने कहा कि आप भी 5 मिनट तो सुनाइए, तो उन्होंने स्वीकार किया. आंध्रा से शरीर होने के कारण इतनी अच्छी हिंदी है, तो उसमें भी आनंद आया. और महाराज जी की तेलुगु मैगजीन में भी अनेक संस्मरण आप लिखते रहते हैं, बहुत खुशी की बात है. अब हमारे महाराज जी की सेवा में बहुत वर्षों तक जो रहे हैं और अनेक वर्षों के बाद मिलना होने के कारण थोड़ा पहचानने में भी कठिनाई हुई हम लोगों को भी, ऐसे स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जो इस समय गो सेवा और वनवासियों की सेवा में लगे हुए हैं अमरावती क्षेत्र में, उनसे मैं निवेदन करूंगा वो अपने भाव पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में समर्पित करें। स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती।

श्री सरस्वती नमः ॐ श्री गुरुवे नमः अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणी सच्चिदानंद रूपाय श्री गुरुवे नमः हमारे वयोवृद्ध स्वामी श्री उमेशानंद जी महाराज और दूर दूर से पधारे हुए सभी संत महात्मा और मेरे गुरु भाई जो सन्यासी बैठे हैं उन सब के चरणों में विनम्र प्रणाम करता हूं। यहां बहुत से भाई और बहनें हमारे परम आराध्य हमारा हृदय यहां की स्मृतियों से भराया है, इसलिए क्षमा करें, बोलने में कठिनाई हो रही है। यहां का ये जो प्रेम भरी अध्यात्म विद्या हमने ये धन्य है, यहां के एक एक कण में महर्षि का पाद विन्यास हुआ है। मैं उन सभी भाई बहनों का जिन्होंने महर्षि के चरणों में बैठ करके सत्संग प्राप्त किया उनका मैं आभारी हूं कि मैं भी उनके साथ सत्संग में बैठता था और मैं अपने को अहोभाग्य मानता हूं, भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे दिव्य महापुरुष के चरणों की सेवा का मौका मिला। ऐसे दिव्य महापुरुष अवतारी पुरुष मैं अपने लिए क्या कहूं, मेरे लिए महर्षि केवल गुरु नहीं थे। लोग कहते हैं कि गुरु से बड़ा कोई नहीं, लेकिन हमारे लिए महर्षि केवल गुरु नहीं, उन्होंने माता पिता और इष्ट का, जिस इष्ट की प्राप्ति के लिए लोग घर बार छोड़ करके एकांतवास में तपश्चर्या करते हैं, साधन भजन करते हैं, हमें उस सब की प्राप्ति हुई। कुछ भी शेष नहीं रहा। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन तो प्रारब्ध से प्रारब्ध के अनुसार होता है, लेकिन हमारा ना जाने कौन सा ऐसा पुण्य था कि मैं एक सरकारी नौकरी करता था और वो भी हिमाचल प्रदेश में, किसी कार्य से दिल्ली आया हुआ था और लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक छोटा सा वहां बोर्ड लगा हुआ था, उसमें महर्षि के प्रवचनों की सूचना लिखी हुई थी। प्रायः महर्षि के प्रवचन जब होते हैं कहीं भी, बड़े बड़े विज्ञापन कभी नहीं छपते थे, जिस प्रकार आजकल विज्ञापन होते हैं, महर्षि को विज्ञापनों से अरुचि थी। अखबारों में जब महर्षि के लेख आते, प्रवचन आते, तो महर्षि भी उसको कोई ज्यादा महत्व नहीं देते है। लोग फोटो खींचने की धुन लगाते थे। यहां आप लोग जानते हैं, मुझे स्मृतियां सब मुझे याद आ रहा है कि हेमलता बहन और धानुका जी ने और हमारे बच्चू भाई जी ने, मधु भाई जी ने और भी जो हमारे भाई बहने आज हैं या नहीं हैं, कुछ भाई बहन महर्षि में समा चुके हैं, उन्होंने महर्षि पर एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी कि महर्षि का स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा है, एक स्मृति के रूप में एक वीडियो बना के रख ली जाए। तो धानुका जी उस वीडियो टेप को वृंदावन भी लेके आए। महाराज हंसते थे कि क्या हो रहा है,

0: शंकाओं का समाधान कर दिया है, कुछ बाकी रहा नहीं है। बाकी तो अपने प्रारब्ध पर हम जहां भी रहें उनकी कृपा निरंतर बरस रही है। हमें महर्षि प्रतिक्षण याद आते हैं और हर तरह से उन्होंने हमें संभाल के रखा है। मैं इन्हीं वचनों के साथ महर्षि के श्री चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करता हुआ अपने सभी जो हमारे गुरु भाई बहन जो महात्मा हैं या गृहस्थ हैं सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। हरिओम तत्सत। हरिओम।
1: वो पंक्ति याद आती है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। आज स्वामी स्वरूपानंद जी के भाव इतने वर्षों के बाद मिलने के बाद भी महाराज जी के प्रति जो भाव उनके बढ़ते जा रहे हैं, बहुत महाराज जी की कृपा है। हम उनको नमन करते हैं। अब इसके बाद हमारे परम श्रद्धेय स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज, जिनकी आज बहुत व्यस्तता है, आप पूछेंगे क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि आज उनका भी जन्मदिन है। तो हमारे गुरुदेव के साथ सब लोग तालियों के साथ उनके जन्मदिन के लिए भी आनंद मनावे। और उनसे जब गिरीश भाई ने समाचार दिया महाराज जी के आनंद जयंती का, तो उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक सुबह का अपना कार्यक्रम बहुत शीघ्र निवृत्त करके और यहाँ प्रेमपुरी आश्रम में पूज्य महाराज जी के इस आनंद जयंती में शामिल हुए। हमको बहुत खुशी है। मैं उनसे कहूंगा अपनी आनंदमय वाणी से आनंदमय संस्मरण आनंद जयंती में सुनावे स्वामी श्री चिदंबरानंद जी महाराज।
2: हरिओम। ओ नमस्ते रुद्रमन्य भवतु तैकवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपिवातयन। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे।
3: दोबारा भगवान के नाम का संकीर्तन करें।

अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत शत प्रणाम। आज जिनकी पावन स्मृति में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उन महर्षि को बारंबार प्रणाम। आज की सभा के अध्यक्ष परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री स्वामी उमेशानंद जी महाराज, इस सभा का संचालन कर रहे हमारे परम प्रिय परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री स्वामी प्रत्यक्ष बोधानंद जी महाराज, अन्य सभी सम्माननीय पूजनीय संत विद्वज्जन, परमार्थ पथिक सज्जनों एवं माताओं, सबसे पहले तो आनंद जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और मैं कैसा महसूस कर रहा हूं आप खुद समझ सकते हैं। आज पूज्य महाराज जी के आज

आशीर्वाद को लेने के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। संयोग है कि एक ही दिन पड़ा और गिरीश भाई ने जैसे बताया तो मैंने कहा कि संतों का दर्शन भी होगा, संतों का आशीर्वाद भी होगा। आनंद जयंती, अगर ये मैं कहूं कि आज ही के दिन आनंद प्रकट हुआ था तो गलत नहीं होगा। आज ही के दिन आनंद का प्रादुर्भाव हुआ। आनंद जयंती की सार्थकता तब होगी जब उस आनंद का जन्म हम सबके हृदय में भी हो। जैसा हम महात्माओं से सुनते हैं कि आनंद तो सबके अंदर में है ही, जन्मना नहीं है। कई बार मैं ऐसा सोचता हूं कि जन्म किसका होता है? आत्मा को तो जन्म होता नहीं, शरीर का जन्म होता है। और आप लोग वेदांति हैं, आप जानते ही हैं कि शरीर की कोई सत्ता नहीं। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि आनंद जयंती की सार्थकता तब है जब उस आनंद का जन्म हमारे अंदर हो, कहने का तात्पर्य यह है कि वो आनंद का जन्म होने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही, समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जिस आनंद को हम बाहर खोजते हैं वो हमारे अंदर में है। इन आनंद जयंतियों जैसे अनेक महापुरुषों के उत्सवों को मनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण इतना ही है कि हम जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसको खोज रहे हैं, वो हमारे अंदर है, उसको हम जान सकते हैं। संतों ने बड़ी कोशिशें की हैं, प्रयास किए हैं ये बताने के लिए कि आप सत्संग करो, आप संतों का साथ करो, उन्हीं के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलेगा, रास्ता मिलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कपिल कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। बड़े बड़े कवियों ने एक बात कही है कि संसार में अगर आपके लिए सबसे बड़ा बंधन है तो वह है संग, आसक्ति। आसक्ति को अच्छा नहीं माना जाता, संग को अच्छा नहीं माना जाता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। संग आपका विनाश की ओर लेकर के जाता है, आपको विनाश की ओर लेकर के जाता है संग। लेकिन भगवान कपिल कहते हैं कि संग की इतनी बुराइयां सुनी है सबने, संग के विषय में इतना कुछ कहा गया है, लेकिन थोड़ा सा एक नया विचार है। क्या? प्रसंग वजरम पाशम आत्मना कवयो विदु सैव साधुष कृतो। अगर वही संग, वही आसक्ति किसी महात्मा के साथ हो, किसी संत के साथ हो, तो क्या लिखते हैं कि कहां संसार का संग, कि दुनिया का संग, कि पदार्थों का संग व्यक्ति के लिए अमर अजर पाश है, बांधने वाला है। और वहीं सैव साधुष कृतो, अगर वही महात्माओं का साथ हो गया तो मुक्त द्वार, मोक्ष द्वार मुपावृतम, आपके बंद, मोक्ष के बंद दरवाजे को खोलने वाला हो जाता है। भगवान कपिल कहते हैं कि जिस आनंद की आप खोज कर रहे हो वो आनंद मिल नहीं रहा है, लोग दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते खत्म हो गए, न जाने कितने पैदा हुए, न जाने कितने पैदा होंगे, कोई गिनती नहीं है, कोई गणना नहीं है, लेकिन उसको कोई पा नहीं सके। भगवान कपिल कहते हैं कि इसी भीड़ में से, इन्हीं लोगों में से, और जिन लोगों ने संसार का साथ छोड़कर, संसार की आसक्ति का त्याग करके अपने आप को संतों के साथ में जोड़ा, महापुरुषों के साथ में जोड़ा, मोक्ष द्वार में पावृतम, उनके लिए आनंद स्वयं खुल गया, दरवाजा खुल गया। जिसको ढूंढ रहे थे मालूम पड़ा वो तो हमारे यहां बंद था, वो खुल गया, प्राप्त हो गया। मोक्ष द्वार में पावृतम, मोक्ष का बंद दरवाजा खोल देता है। कहने का अर्थ है कि जो अज्ञान का पर्दा था वो हट जाता है, समाप्त हो जाता है। ये ऐसे उत्सव हमको संतों से जोड़ते हैं। आप देख ही रहे हैं कि महाराज जी की कितनी कृपा है कि जब तक वो स्वयं रहे तब तक आपको सत्संग करवाते रहे, तब तक उसी आनंद के विषय में बताते रहे, और आज जब वे शरीर के रूप से हमारे बीच में विद्यमान नहीं है, और तब इन संतों के रूप में विद्यमान होकर के उसी आनंद से जोड़ने के लिए आज भी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यही आनंद जयंती की सबसे बड़ी सार्थकता दिखाई पड़ती है। ऐसे महापुरुष जिनको, जो शरीर से नहीं रहने के बाद भी और समाज के लिए एक आदर्श बने हुए हैं, समाज के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं,
समाज के लिए और हम सबके लिए, सिर्फ गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, हम सबके लिए। जैसा कि अभी आप पूज्य स्वामी हरितीर्थ जी से सुन रहे थे कि वे जब भी कहीं प्रवचन करते हैं तो महाराज जी को जरूर याद करते हैं, ये उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया। और मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ही कोई ऐसा वक्ता हो जो महाराज जी को उद्धृत न करता हो, भले ही वो नाम न लेता हो, अलग बात है, लेकिन महाराज जी को जरूर याद करता है। और क्योंकि वो ऐसी हस्ती हैं, बिना उनकी याद के, स्मृति के भागवत करने वाला कथाकार अपने आप को अधूरा समझता है, ऐसा मैं मानता हूं। तो चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो, सभी के लिए वे आदर्श हैं, सभी के लिए मार्गदर्शक हैं। और जैसा आप अभी सुन रहे थे कि इस प्रेमपुरी में तो क्या कहें, इसका तो अहोभाग्य है, नट्टू भाई हमसे कहते हैं और आप सबने सुना होगा कि प्रेमपुरी में तो अखंड आनंद बसा हुआ है, कण कण में रमा हुआ है, हम लोग उसी की अनुभूति करें, यही कहकर के उनके चरण में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। ठीक है, बधाई।

0: पूर्व पूज्य महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम।
1: सौ वर्ष की याद आ गई। हमारे डालमिया जी भी बधाई गाई गई तभी आए हैं। स्वामी चिदंबरानंद जी बहुत आनंद दिया अपने उद्बोधन से, और बधाई नहीं गाते तो अधूरा ही रह जाता ना। आज गुरुदेव का प्राकट्य दिवस है, पावन प्राकट्य दिवस। हम सभी लोग आनंद की चर्चा कर रहे थे। गिरीश भाई ने कहा

0: आनंद प्रकट क्यों नहीं होता है? उसका कारण वही है। हमारे गुरुदेव का एक वाक्य है कि जीवन का तुम्हारे लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य अभी तक निश्चित नहीं किया तो आज ही कर लो। लक्ष्यहीन जीवन का कोई अर्थ निकलता नहीं। हम धर्म की दृष्टि से जी रहे हैं, भक्ति की दृष्टि से जी रहे हैं, या वेदांत की साधना को आगे बढ़ाते हुए जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। अगर एक लक्ष्य हमारे जीवन में हुए तो आनंद अनुभूति पूर्णता के साथ प्रकट होगा, वो तो साधना की पूर्णता में। लेकिन साधना प्रारंभ होने के साथ साथ आनंद का प्राकट्य प्रारंभ हो जाता है। जैसे आप यहां से वृंदावन की योजना बनावे, जो कभी वृंदावन गया नहीं और कृष्ण प्रेमी है, तो वृंदावन पहुंचेगा तब तो आनंद आएगा ही। लेकिन जब वृंदावन पहुंचने के लिए बॉम्बे सेंट्रल से ट्रेन में बैठ जाएगा, तभी से वृंदावन का स्मरण होने लग जाएगा और आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर हमारे जीवन का एक लक्ष्य हुए, तो धर्म लक्ष्य हुए, देश संस्कृति लक्ष्य हुए, भक्ति लक्ष्य हुए, ज्ञान लक्ष्य हुए, अगर भगत सिंह फांसी के फंदे में झूलते हुए भी हंसते हैं, आनंदित होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, उनका वजन जब फांसी की सजा सुनाई गई और जिस दिन फांसी दी जानी थी तो वजन बढ़ा हुआ था, क्यों? मौत कोई आनंद का विषय तो नहीं है? फांसी की सजा सुनने के बाद तो व्यक्ति दुखी होता है, वजन कम होता है। उनसे पूछा गया तो उनका जवाब वही था, एक लक्ष्य निश्चित था। उन्होंने कहा, मेरा जीना भी देश के लिए था और मेरी मृत्यु भी देश के लिए हो रही है, ये मेरे को खुशी है। उस खुशी से वजन बढ़ा। तो हमारा अगर एक लक्ष्य है और लक्ष्य अच्छा है, देश हो, संस्कृति हो, धर्म हो, तो लक्ष्य के लिए चलने में भी एक आनंद आता है, एक खुशी आती है। ऐसा नहीं कि उसमें चलने में सब अनुकूलता ही होगी, सब लोग अच्छा ही कहेंगे, आवश्यक नहीं है। हनुमान जी महाराज को लंका में निशाचरों ने बहुत अपशब्द कहे, आप सब लोग जानते हैं, जब मेघनाथ बांध के ले गए, क्यों पाठक जी? यहां तक लिखा है कि चरण प्रहार भी। हाँ, जब ब्रह्मफाश में बांध के मेघनाथ जी ले गए तो हनुमान जी के ऊपर हंसी उड़ाते थे और महाराज मारते थे, लेकिन हनुमान जी के चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं था। क्यों? सम्मान मिले तो राम जी की सेवा, और अपमान मिले तो भी राम जी की सेवा, क्योंकि उनका जीवन राम जी के लिए था। राम जी के लिए काम करते हुए हमारे जीवन में जो मिले वो राम जी की कृपा है, वो राम जी का प्रसाद है। तो हमारा जीवन भक्ति से एक लक्ष्य में स्थिर हो जाए तो भी आनंद की अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी। पूर्णता में तो आनंद ही आनंद होगा, जैसे हमारे महाराज जी के जीवन में आप लोगों ने देखा ही। और ज्ञान मार्ग का साधक हो तब तो कहना ही क्या है। जहां विवेक वैराग्य विद्यमान है, वेदांत में अगर आनंद में पर्दा पड़ा हुआ है तो उसका कारण वही है, वैराग्य का अभाव।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: हम जब कहते ही है कि ओमकार ही सब कुछ है, तो ओमकार ही सब कुछ है। अब सर्वात्मता जब सिद्ध करनी है ना, तो ये जो ओम है, यही जगत है, उसके सब प्रूफ आपको बताने पड़ेंगे। हाँ, सब कुछ कागज देना पड़ेगा। अब कुछ अपना जो बयान है, अपना जो केस है, वो जब आप बता रहे हैं तो आप केस लड़ने जाते हैं तो क्या करते हैं? सब प्रूफ देते हैं ना? पूछिए। सब प्रूफ देते हैं और प्रूफ के साथ क्या देते हैं? पहले जो बुक में पहले जो कुछ हो गया उसके भी प्रूफ देते हैं, उसके भी नंबर्स देते हैं कि भाई ये यहाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था इसलिए मैं सच्चा हूँ। तो जगत के बारे में हमें अभी बताना है आपको कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय जो है, वो पंच महाभूत जो है, मेरे तक का वो ओम है, वो आपको अभी बताना है शास्त्र को। उतना ही नहीं, ऐसा दूसरे कहाँ कहाँ बताया है, कौन से उपनिषदों में बताया है, वो भी कलम आपको देनी पड़ेगी। ये एक ही पार्ट हो गया, अब ये दूसरा पार्ट भी प्रूफ करना है। ये उपनिषद दो बाजू से चल रहा है, अब ये ओम उसी समय पे अक्षर पर ब्रह्म भी है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये उपनिषद में दो विचारधाराएं चलेगी कि ओम परमात्मा किस प्रकार है, वही ओम जगत किस प्रकार है, और फिर आपको पता लगेगा कि ये परमात्मा है, वही ओम है, वही जगत है। ये ओम ताने बाने की जैसे घुल मिल जाता है। जैसे आप शर्ट है, आप एक शर्ट को देखते हैं, जब आप शर्ट को देखते हैं तो उसकी एक राइट स्लीव होती है और लेफ्ट स्लीव होती है। तो ये दाई और बाई जो स्लीव होती है, जो बाहें होती है, वो दाई जो बाहें है वो बाई हो सकती है। हाँ, ये राइट हैंड की जो स्लीव है वो लेफ्ट हैंड की हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? यहाँ उपनिषद कहते हैं हो सकती है। कैसे? उसके भीतर जो धागा चल रहा है, जो ताना बाना है, वो एक ही है। जब उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है जगत रूप से, तो डाई और बाई ये सब हो जाती है। जब सिर्फ ठोस उसका एक सूत्र निकाल दिया और यहाँ पे सूत्र रख दिया, तो ये जो सूत्र है, ये जो पूरा कपड़ा है और कपड़े में से निकला हुआ नाम आकार है, वो तीनों एक ही है। कपड़ा बनाने वाला जो है, कपड़ा बनाने के लिए जो संकल्प वो कई किया है, वो संकल्प रूप जो पूरा ताना बाना जो है, वो संकल्प करने वाला कोई चेतन, कपड़ा बनाने वाला कोई चेतन तो होगा ही, ज्ञान तो चेतन में ही हो सकता है। तो ये कपड़ा बनाने वाला कोई चेतन व्यक्ति, उसने बनाया कपड़ा और ये धागा, सब एक ही है। ये बहुत ही सरल है। तो ये एकीकरण कैसे हो रहा है वो अब हम उपनिषद में देखेंगे। तो यहाँ कहा तस्य उपव्याख्यानम, किसका उपव्याख्यान है? अक्षर का, ब्रह्म का। तो बोले ब्रह्म का उपव्याख्यान हो ही नहीं सकता, वाणी से ही नहीं प्रदर्शित हो सकता, उसका उपव्याख्यान नहीं कर सकते। ओंकार को माध्यम बना के ही परमात्मा तक जा सकते हैं। उपव्याख्यान याने दृष्टांत दिया है भाष्य में भी कि कोई गवर्नर को मिलना चाहता है, तो ए जो है, उसका जो पर्सनल असिस्टेंट है, पीए है, वो गवर्नर के पास है। तो गवर्नर के पास जाने के लिए, गवर्नर को मिलने के लिए माध्यम कौन सा होगा, निकटता किसकी है? तो भाई गवर्नर के साथ आप किसको ढूंढेंगे? गवर्नर को मिलना है तो कहाँ, किसको पहले ढूंढेंगे? गवर्नर को नहीं ढूंढा जाता, आप वो माध्यम को ढूंढेंगे। हाँ, फोन लगा के 10 लोगों को पूछेंगे कि भाई गवर्नर के पास का आदमी कौन है भाई, हु इज द नियरेस्ट वन टू हिम, उसका मुझे संपर्क करा दीजिए, तो बात बन जाएगी। तो हमारी जो व्यवहार में भी जो सर्च है, व्यवहार में भी जो शोध है, वो कौन सी है? कोई बड़े आदमी को मिलना है तो उसके पास की व्यक्ति को ढूंढना। बस ऐसे ही ये ब्रह्म क्या है, बहुत बड़ा है, हा? महान, अणोहो अणियान महतो महियान। अब उसे ढूंढने चले हैं, अब उसे ढूंढने चले हैं, उसे मिलना है तो उसके पास वाला कौन है भाई? निश्चित कोई शरीर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर तो मरण धर्म है। उसके पास वाला उसके जैसा होना चाहिए। आप इतना सोचिए कि कोई गवर्नर के पास वाला उसका पीए होगा, वो सिर्फ 10वीं क्लास पास होगा, क्या होगा उसकी डिग्री? अरे भाई, बहुत अच्छी सी डिग्री चाहिए। इनफैक्ट गवर्नर की जो डिग्री है उससे ज्यादा उसकी चाहिए, तो ही वो इसको संभाल सकता है। ठीक है। और ऐसा ही होता है जीवन में, आप देखिए ये जो पर्सनल एडवाइजर्स जो होते हैं बड़े आदमियों के, वो उनसे ज्यादा डिग्री वाले होते हैं। क्यों? तो ही उनको पता है, वो ऐसे ही रखते हैं, तो ये मेरा ध्यान रख सकेगा, मैं कितनी बार सोच सकूं, मैं यहाँ गलत हूँ तो ये पोर्टफोलियो इसको दे दिया कि आप यहाँ गलत है, आईना दिखा देते हैं या आईना दिखाने का ही काम करते हैं। तो व्यवहार में भी मुख्य व्यक्ति से उसकी जो ध्यान रखने वाली व्यक्ति है उसे ज्यादा समर्थ रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि वो मुख्य व्यक्ति को उसकी जो गरिमा है वो बनाए ही रखनी पड़ती है। इसीलिए तो ये ब्रह्म की गरिमा, और ब्रह्म ऐसे वैसे को रखेगा अपने पास? निश्चित शरीर जो मरण धर्मा है उसे अपने पास नहीं, उसकी परछाई भी नहीं आ सकती है, तो शरीर तो माध्यम नहीं है। मन उसके पास है तो बोले मन भी उसके पास नहीं है, क्यों? ये तो सतत परिवर्तनशील है। मन संकल्प विकल्प है, मन में नाम और रूप का ही बारे में मन सोच सकता है, और परमात्मा नाम और रूप से परे है, यानी मन भी नहीं हो सकता उसके निकटतम। बुद्धि है तो बोले बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि वही निर्णय ले सकती है जो नाम रूपात्मक विषय और वासना जनित है। बुद्धि और निर्विकारी के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकती, नहीं तो अब तक तो हमने निर्णय कर ही लिया होता, हम यहाँ आते ही नहीं ना, कोई भी निर्णय कर लेते थे। तो बोले बुद्धि भी उसके पास नहीं आ सकती है। ये जो आत्मा है, ये जो गवर्नर है, उसने अपने पिए में शरीर मन और बुद्धि को निकाल दिया है, अब कौन बचा भाई? तो यहाँ उपनिषद कहते हैं कि इसके लिए शास्त्र और गुरु के पास जाना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। शास्त्र ने, गुरु ने कहा कि ये ओम है, तो अब ये ओम है, बात खत्म हो गई। तो अब सोचिए ये ओम क्यों है, ये ओम हकीकत में क्या है? तो देखिए ये परमात्मा जो है वो कैसा है, वाणी के अगोचर है। हा? वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती, यानी वर्णन नहीं किया जा सकता। तो भी वर्णन किससे हम करते हैं? हम जो यहाँ बोलते हैं कि वाणी पहुंच नहीं सकती है, ये किसके माध्यम से कहा? हमने वाणी के ही माध्यम से कहा, यानी वाणी थोड़े तक तो पहुंच ही सकती है, पूरा नहीं पहुंच सकती है ऐसा नहीं है। तो वाणी पूरा नहीं पहुंच सकती है, पर यह शरीर मन संगात में कोई मैक्सिमम पहुंच सकता है तो वो वाणी है। ये मन नहीं है, हम वाणी है जो एकदम ही करीब से ओम का वर्णन कर सकती है। तो ओम का वर्णन करने के लिए वाणी जब आगे बढ़ी, वाणी जब आगे चली, तो मैक्सिमम वर्णन कहां तक आके रुक गया? वाणी ने अंत में कहा क्या कहा? तो बोले ओम। वो जो अंतिम शब्द निकला वो ओम, वो जो शुरुआत का ब्रह्मा जी का शब्द निकला ओम तत्सद इति निर्देश्य, वही ओम। ये ओम का व्यवहार में भी उपयोग है। ओम जो है मंगल सूचक है, ओम जो है वो हकारात्मक रूप में भी दिया जाता है, ओम जो है वो नकार के रूप में भी, निषेध के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है। कैसे उपयोग किया जाता है? सम्मत के रूप में भी उपयोग किया जाता है, क्षमा के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कोई अगर आप देरी से आए यहाँ, अभी प्रवचन खत्म होने के बाद कोई महात्मा को आप स्वामी जी को बोलते हैं कि भाई लेट हो गया, क्षमा करना, तो वो स्वामी जी क्या कहेंगे? आप गुरुजनों से सुनेंगे, वो ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, भाई क्या हो गया था, कहाँ गए थे, किसको मिले थे, ऐसा नहीं पूछते। वो क्या बोलते हैं? ओम। ये ओम से क्या है कि ठीक है मैंने आपको माफ कर दिया, माफ करने के बाद ओम कहते हैं कि ओम से मैं प्रार्थना भी करते, देखो ओम बहुत काम करते हैं, बहुत सारे काम ओम कर देता है। ओम कहने से मैंने आपकी बात सुनी, आपकी अपेक्षा क्या है कि मैं माफी दूं, ये ओम से माफी भी मिल गई। यही ओम से मैं प्रार्थना कर लेता हूं कि दोबारा आप जल्दी आओ, यही ओम से मैं प्रार्थना कर लेता हूं कि यहां आने के लिए जो जो कष्ट, जो जो प्रतिकूलता आपको आती है यहां नहीं आने के लिए, वो सब प्रतिकूलता है आपके जीवन में से निकल जाए। ये ओम शब्द से चार बातें हो गई। तो ये ओम शब्द व्यवहार में इतना सब कुछ कर देता है, तो परमात्मा क्या ना करेगा, ये तो ओम की परछाई है। हाँ, तो ये ओम बोल दिया तो बहुत कुछ हो जाता है। अब ये जो ओम है, वाणी की हम बात कर रहे थे कि अंत में कुछ बोलना है तो वो वाणी है, ये ओम है। अब आगे कहते हैं तस्य उपव्याख्यान, ये निकट शब्द समझाने के लिए, उपव्याख्यान शब्द समझाने के लिए, निकट की बात की निकटतम, ये स्पष्ट है। अब कहते हैं क्या है? तो बोले भूतम भवत भविष्यत इति सर्वम ओंकार एव, जो कुछ हो गया है, हो रहा है और होने वाला है, ये ओंकार है। यानी क्या? भूत भविष्य वर्तमान यानी जो भी वही व्यक्त है, ये पूरा जो जगत जो है, जो भी व्यक्त है, जो भी दिख रहा है, जिसका विजृंभण हो रहा है, वो ओंकार है। पर उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट के साथ हमें चलना है, क्यों? क्योंकि ये भूतम भविष्य, ये जगत जो है वो ओंकार है, ये एक स्टेटमेंट हुआ। अब ये भी है ना, उसकी भी बात यही की गई है, क्या है? यच्च अन्यत, इससे अन्यत, यानी भूत भविष्य वर्तमान से अन्यत, यानी जो जन्मा हुआ है, जो आकार है, जो विकारवान है, जो मरण धर्मा है, जो अनित्य है, जो मर्यादित है, जो परिवर्तनशील है, उससे बराबर ऑपोजिट वो क्या है? तो बोले यच्च अन्यत त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। त्रिकालातीतम, त्रिकालातीतम यानी काल से भी जो पर है, जिसको अभिव्यक्त होने के लिए काल चाहिए, यानी वही वो परमात्मा, यानी वो अव्यक्त प्रकृति की यहाँ बात की है। शंकराचार्य जी ने यहाँ लिखा है अव्यक्त प्रकृति की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि तीन पुरुष की बात, क्षर अक्षर उत्तम पुरुषोत्तम्य, उत्तम पुरुष क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, यहाँ तीन पुरुष की बात जहाँ की गई थी, यहाँ वैसे ही जो अव्यक्त प्रकृति है, यानी अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, ये परमात्मा ही है। अव्यक्त नामनी ये प्रकृति यानी परमात्मा ही है, यही परमात्मा ओमकार से, ओमकार रूप अपने शक्ति से, ओमकार बीज है, बीजात्मक कहते हैं, ये ओमकार रूप बीज से भूत भविष्य वर्तमान निकाल लेते हैं। पर यही इनफ नहीं है, ओमकार में चौथी भी मात्रा है, और ओमकार में जो अव्यक्त मात्रा है वो क्या है? वो परमात्मा है। आपको बताना क्या है कि जो कुछ भी चीज है, जो कुछ भी दिख रहा है, कोई भी वस्तु है ना, वो अधिष्ठान के बिना नहीं रह सकती, ये एक बात है, एक नियम देख लिया। दूसरी बात, जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ कल्पना है या ठोस भी दिख रहा है, अधिष्ठान के बिना नहीं रह सकती। तो अब थोड़ा आगे आप सोचिए कि अधिष्ठान और कहाँ और वस्तु और कहाँ रह सकती है? हाँ, चलो ये मेरा ये दायां हाथ है वो अधिष्ठान है, ये पेपर वेट के लिए, तो मैं कब कह सकती हूँ कि दायां हाथ पेपर वेट का अधिष्ठान है? ये अलग हो सकता है? सुनिए बराबर, जान, अलग नहीं हो सकता ना। अधिष्ठान और आधार अलग हो सकता है या नहीं?
4: नहीं,
3: नहीं हो सकता है ना। तो जहाँ अधिष्ठान है वहीं उसका आधेय है, हा? और जहाँ आधेय है अधिष्ठान के साथ साथ लेके घूमता है। बस इतना ही आपको चाहिए बताना कि ये भूतम भविष्य और वर्तमान जो है, पूरा जगत प्रपंच जो है, ये सब कुछ जो है, वो अपने अधिष्ठान को साथ में लेके घूमता है। अगर ओंकार में, अगर ओंकार भूत भविष्य वर्तमान है, तो ओंकार के भीतर उसका अधिष्ठान भूत भविष्य वर्तमान के साथ साथ चल रहा है, और वो जो अधिष्ठान जो साथ चल रहा है ओंकार का, वही उसकी चौथी मात्रा, वही तुरीय है, वही बताना है। कोई अलग नहीं है, कोई और नहीं है, कोई और कहीं नहीं है। आधार जो आधेय है, जो जिसका सहारा लेकर चलता है, वो उसके सहारे के साथ ही बंधा होता है, इनफैक्ट बहुत ही बंधा होता है, अटैच होता है। पानी में डूबेंगे तो पता लगेगा, कोई नहीं डूबने वाला, डूबेंगे तो पता लगेगा कि जब कोई लकड़ी फेंक देता है, फ्लोट फेंक देता है, तो वो फ्लोट को आप कैसे पकड़ लेते हैं, वो आधार को कैसे पकड़ लेते हैं? एक जान कर लेते हैं, यही परमात्मा है, यही आधार है, अब इसे नहीं छोड़ूंगा, तरण का उपाय है। ऐसे ही ये शरीर मन बुद्धि का जो अहम अहमतया भाव है, उसके तरण का उपाय क्या है? आधार क्या फेंकते हैं उपनिषद? तो आधार बोली दिया, ओम आपको दे दिया है, अब तर जाओ, ये आधार को पकड़ लो। हाँ, आधार और आधेय एक ही है। अगर मेरा ये शरीर मन बुद्धि का संगात है, तो उसका कुछ तो आधार होगा ना, वो ऐसे ही तो नहीं टिक सकता है। हमेशा वी आर कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट अपॉन दी अधिष्ठान आधार। तो आधार और अधिष्ठान साथ साथ ही होते हैं, और ये दोनों का ऐक्य अपनी बुद्धि से कहाँ दिखता है? देखिए, आत्मा पूरा अधिष्ठान है, और ये जगत प्रपंच जो है वो पूरा उसके ऊपर आधेय है, आधार है। भ्रांति कल्पना वो अलग बात है, पर है तो सही ना। और अधिष्ठान और ये दृश्य प्रपंच हमें दिख नहीं रहा है, हमारी मति कहाँ, हम स्विच ऑफ हो जाते हैं, प्रवचन तो सुनते हैं, पर हम बुद्धि को क्यों, कब बंद करते हैं? तकलीफ कहाँ हो जाती है कि भाई आप जगत को पूरा आत्मा को जगत का अधिष्ठान बता रहे हैं ना, तो हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते। इट इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन कि यह कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। इसीलिए ओम को ले आए कि ओम एक ऐसा उच्चारण है, ओम एक ऐसा माध्यम है जहां शास्त्र ये दोनों को बता सकता है। किसको? आधेय को और आधार को। इसको शास्त्र की परिभाषा में वाच्य और वाचक कहते हैं। तो दोनों को, अधिष्ठान और आरोप को, एक एक ही जगह पे बता सकने की कोई की शक्ति है तो वो ओमकार की है, और इसीलिए ओम को माध्यम बनाया हुआ है। तो ओम में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जो है, भूत, भविष्य, वर्तमान में, ये तीनों जो है, जो व्यक्त जो है, वो आपको बताएंगे। कैसे बताएंगे? तो अकार, उकार और मकार की उसकी जो संज्ञा है वो तीन से बता देंगे, पर ओमकार की चौथी जो संज्ञा है, तुरीय जो संज्ञा है, वो तुरीय संज्ञा को आप कैसे बताएंगे? तुरीय संज्ञा का कोई इलाज है या नहीं? बोले ये जो अव्यक्त है तदपि ओमकार एव, वो भी ओमकार के भीतर है, पर वो बताने के लिए ओम का जब उच्चारण होता है, ओम का जब आपने उच्चारण किया, अब आप सब कुछ, सब विचार बाजू पे रख के आंख बंद कर दीजिए, सब आंखें बंद कर दीजिए, कोई घड़ी पे तो, घड़ी पे तो देखना ही नहीं, मैं देख रही हूँ, आंखें शांति से बंद कर दीजिए, एक हाथ दूसरे हाथ में उंगलियां इंटरलॉक कीजिए, मैं उच्चारण करूँ उसके बाद आप उच्चारण कीजिए।

जब आप ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं तो आपका ध्यान मात्र आपसे उच्चारित जो ध्वनि प्रकट हो रहा है, उच्चारित जो ध्वनि प्रकट हो रहा है उसी के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा।

अब मेरे ध्यान का विषय ओमकार के ध्वनि के बाद जो भी क्षण है, अब मेरा ध्यान ध्वनि से हटके ध्वनि खत्म होने के बाद मेरा ध्यान शुरू होगा। जो ध्यान मन की जो वृत्ति ध्वनि सुनने में मैंने लगाई, अब वही वृत्ति वहां से हटा के ध्वनि के बाद ध्यान लगाना शुरू करेगी।

ध्यान शुरू, आंखें बंद ही रखे सुनने का। ओम की ध्वनि का जब उच्चारण हुआ, अ उ और म शब्द का जन्म हुआ, उसकी स्थिति रही, उसका अंत रहा, उसके ऊपर ध्यान भी कर सके, मेरे ध्यान का विषय ये ध्वनि बन सका। अगर ये ध्यान का विषय बन सका, ये ध्वनि जो उत्पन्न हुआ, तो ये ध्वनि का कारण उसके साथ ही उत्पन्न होगा। ये ध्वनि का जो कारण है, जब तक ध्वनि सुनाई देती है तब तक वो कारण दिख नहीं रहा है। बैकग्राउंड में अगर शांति अशब्द नहीं होगा तो उसके ऊपर कोई भी शब्द नहीं उठ सकेगा। कैनवास का जो कपड़ा है वो पूरा सफेद स्वच्छ नहीं होगा तो उसके ऊपर कोई चित्र नहीं बन सकते, पर चित्र बनने के बाद कैनवास का सफेद रंग जो है अधिष्ठान दिख नहीं रहा है। इसी प्रकार जब ध्वनि है तब अधिष्ठान नहीं है, वो अधिष्ठान को ढूंढने के लिए आपको बताया गया। ध्वनि खत्म होने के बाद जो आपने ध्यान दिया वही उसका अधिष्ठान है। ओम के बाद जो, ओम के ध्वनि के बाद जो भी कुछ अनुभव हो रहा है वही ओम की चौथी तुरीय मात्रा, उसी का अधिष्ठान है। वो जो दो ओम के बीच में जो जगह है उसी का विश्लेषण ये शास्त्र कर रहे हैं। यही आत्मा की अनुभूति का विषय है, जिसकी चर्चा, जिसके ऊपर आप वाणी से कुछ भी बोल नहीं सकते, मन से विचार नहीं कर सकते, मात्र उसका अनुभव कर सकते हैं। पर माध्यम क्या लिया? ओम। किसका सहारा लिया? ओम। यही ओम में ये शब्द और अशब्द मिल सकता है। बिना ओम के उच्चारण, जो ओम के बाद की ध्वनि, जो ओम के बाद की शांति का अनुभव आपको करने के लिए बोला, बिना ओम उच्चारण किए आप उसे याद करने का प्रयत्न कीजिए। मात्र बिना ओम के उच्चारण वो अशब्द को पकड़ पाना करीबन नामुमकिन है। इसीलिए ओमकार के उच्चारण के बाद दो ओमकार के बीज की जगह का विश्लेषण करने के लिए ये ओमकार की सहायता ली जाती है। मैं यहाँ से शांति पाठ करूंगी, बाद ही आप आंख खोल सकते हैं, और ये प्रवचन के बाद कृपा करके कोई भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करेगा, शांति से आप अपने अपने कार्य में जा सकेंगे। फिर से एक बार मैं उच्चारण कराती हूँ, आप उच्चारण पे ही भी ध्यान दीजिए और उच्चारण के बाद की जो अवस्था है उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: काल भैरवाष्ट

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

त्रयस्त्रिगुंसच्च चत्रयस्त्रिगुंसन्मे मे त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसच्च चत्रयस्त्रिगुंसत्रयस्त्रिगुंसच्च मे मे चत्रयस्त्रिगुंसत्

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: சிவாய. You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, you're about to listen Shiva Stotras. The title is Harihar Abheda Sudhi of Srimad Appaya Dikshita, presented by டாக்டர் எம் கோகுலகிருஷ்ண ஐயர். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: ஸ்ரீமத் அப்பைய தீட்சிதேந்திர ரச்சிதா ஹரிஹராபேத ஸ்துதி. மாரமணமு மாரமணம் ஃபணதர தல்பம் ஃபணாதரா கல்பம் முரமதனம் புரமதனம் வந்தே பாணாரிம சமபாணாரிம் கோநயனமிலா நயனம் ரவிசசிநேத்ரம் ரவீந்துபன்ஹ்யக்ஷம் ஸ்மரதனயம் குஹதனயம் வந்தே வைகுண்டமுடுபதீசூடம் கிருஷ்ணதனுமுமார்த்ததனும் ஸ்வசுரகிருஹஸ்தம் சுமேருஶ்ருங்கஸ்தம் தசவபுஷம் வசுவபுஷம் வந்தே பூஜானிமகிலபூபாலம் க்ருத்ரதரமுதக்னிதரம் ஜலதிசுதாகாந்தமகஜாகாந்தம் கருடஸ்தம் விருஷபஸ்தம் வந்தே பஞ்சாஸ்திரமகிலதிக்வஸ்த்ரம் ப்ரஹ்மசுதமிருகாதிநுதம் கஜகிரிவாசம் கஜேந்திரசர்மாங்கம் சுரசரணம் ஹரிசரணம் வந்தே பூதாரமகிலபூதாரம் பார்த்தசகமுபாத்தமகம் ஜலதரகாந்திம் ஜலந்தராராதிம் விதிதனயம் குஹதனயம் வந்தே நீலேஷமகிலபூதேஷம் பீதபடமருணஜடம் பரிமலதேஹம் பவித்ரபூத்யங்கம் ஜலஜகரம் டமருகரம் வந்தே யோகஸ்தமகிலயோகீட்யம் சக்ரகரமபயகரம் மணிமயூஷம் ஃபணாமணீபூஷம் விதிருதனும் கிரிதனுஷம் வந்தே கோவிந்தமனகோவாஹம் வஸ்தாம் பிஷங்கம் வசனம் திசோ வா கருத்மதாயாது ககுத்மதோ வா நித்ராது வா நிருத்யது வா திரங்கே பேதோ நமே ஸ்யாத் பரமஸ்யதாம்னஹ. இதி ஸ்ரீமத் பாரத்வாஜ குலஜலதி கௌஸ்துப நித்யாக்னிஹோத்ரி மீமாம்சகமூர்த்தன்ய ஸ்ரீகண்டமத ப்ரதிஷ்டாபனாச்சார்ய சதுரதிக சத ப்ரபந்த நிர்வாஹக ஸ்ரீமத் அத்வைத வித்யாச்சார்ய விஸ்வஜித்யாஜி ஸ்ரீ ரங்கராஜாத்வரிவரசூனு ஸ்ரீமத் அப்பைய தீக்ஷிதேந்திர ரச்சிதா ஹரிஹராபேத ஸ்துதி சம்பூர்ணா.
1: Om Namah Shivaya. Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thirunariya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, you are about to listen Shiva Stotras. The title is Kala Bhairavashtakam of Sri Adi Shankaracharya, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Srimad Shankara Bhagavat Pada Rachitam Kala Bhairavashtakam. देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकंठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रभूषणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासीलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवम् इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्याणां श्रीमच्छङ्करभगवतां कृतौ कालभैरवाष्टकं सम्पूर्णम्।
1: ॐ नमः शिवाय। यु आर् लिस्निङ्ग् टु शैवम् डाट् आर्ग् रेडियो, दि 24/7 स्पिरिचुवल् चानल् फ्रम् शैवम् डाट् आर्ग्।
4: ॐ नमः शिवाय।

0: महादेव। इति श्रीमद्भारद्वाजकुलजलधिकौस्तुभ नित्याग्निहोत्री मीमांसकमूर्धन्य श्रीकंठमतप्रतिष्ठापनाचार्य चतुरधिकशतप्रबन्धनिर्वाहक श्रीमदद्वैतविद्याचार्यविश्वजिद्याजिश्रीरङ्गराजाध्वरिवरसूनु श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्ररचितं श्रीरामायणतात्पर्यसारसङ्ग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द फॉलोइंग इज शुक्ल यजुर्वेदम मात्यांदीन शाखा अध्याय 15।

ब्राह्मण असुर्य शूद्र दिवेरात्मजनेशुभूतमत्र नित्यन्यतरो ब्रूयाद् हिमबुद्धादि कारण जनेषु भूतमत्र नित्यन्यतरः

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Maha Mandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: इसलिए हमने भूमिका में कहा था, स्वयं आनंद स्वरूप होते हुए भी साधन सापेक्ष क्रीड़ा करके आनंदित हों ऐसी इच्छा परमात्मा की हुई, इसकी शिव जी की हुई, माया वृत्ति से ये इच्छा हुई। परमात्मा को ये जो इच्छा हुई है, मैं संसार में क्रीड़ा करूं, खेल खेलूं और खेलकर आनंदित हूं, इस इच्छा के चलते प्रपंचम अखिलम सृजसि, अपनी ही सृष्टि की है, खुद अपने ही इस प्रपंच को बनाया है। क्यों बनाया? खेलने के लिए बनाया। तब फिर क्रीड़ा मृगास्ते जनाहा, संसार में आपके बायक और जो भी है, आपके अलावा जो है, सब क्या है? क्रीड़ा मृग है। क्रीड़ा मृग अर्थात खेल के खिलौने। खेलने के लिए जो खिलौने होते हैं ना, उनको क्रीड़ा मृग बोलते हैं। वास्तव में बच्चे सभी के अच्छे होते हैं, बच्चे सभी के अच्छे होते हैं। इंसान को भी गधा भले ही अच्छा न लगे, गधे का बच्चा बहुत आनंद देता है, उसकी चाल ढाल ही बड़ी निराली होती है, बड़ा आकर्षण होता है, मतलब भोला भाला पना दिखता है। कुत्ता भले ही पस अच्छा न लगे, कुत्ते के बच्चे बड़े आनंददायक होते हैं। किसी की भी, चाहे बकरे के देख लो, चाहे गाय के बछड़े देख लो, बिल्ली को देखकर व्यक्ति इतना आकर्षित नहीं होता है, बिल्ली के बच्चों को देखकर आकर्षित होते हैं। इसलिए जब मृग देखते हैं या मृग के शावक देखते हैं, मन में एक अलग प्रकार की स्फूर्णा अलग भाव प्रकट होता है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम। जनाः क्रीडा मृगाः, एक क्रीडा मृगा, संसार में जितने भी जीव हैं वो सब आपके क्रीड़ा मृग हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, ध्यान देना, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, चाहे सरीसृप हो, चाहे पक्षी हो चाहे कीट पतंग हो, ये सब आपके खिलौने हैं। इन सबसे आप क्रीड़ा करते हो, खेलते हो, खेलने के प्रयोजन से आपने इनका निर्माण किया है, बनाया है, इनकी रचना की है। तो शंकराचार्य जी आके क्या कहते हैं, यत कर्मा चरितम मया च, तब मैं जो चेष्टा करता हूं। हम सभी क्रीड़ा मृगा हैं, इसलिए हम जो भी चेष्टा करेंगे, चाहे उठेंगे चाहे बैठेंगे चाहे सोएंगे चाहे हंसेंगे चाहे रोएंगे, यह कर्माचरितम्। मया यत् कर्म आचरितम्, मेरे द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं भवत प्रत्यय भवत्येवतत, सारी क्रियाएं आपकी प्रसन्नता के लिए ही हैं। क्योंकि संभो स्वस्य कुतूहलस्य कारणं मत्चेष्टितं निश्चितम्। मत्चेष्टितम्, मेरे द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है वह चेष्टाएं वो क्रियाएं मैं अपनी मर्जी से तो करता नहीं, समझे कि नहीं। मैं अपनी मर्जी से तो कुछ करता नहीं, क्योंकि मैं तो खिलौना हूं। इस श्लोक को पढ़ते समय में आप शतरंज के खेल को स्मरण कर लो। शतरंज के खेल में राजा होता है, मंत्री होता है, सिपाही होते हैं, घोड़े होते हैं, ऊंट होते हैं कि नहीं। यही है, राजा, मंत्री, सिपाही, घोड़े और ऊंट है। हाथी भी होता है शतरंज में? अच्छा, हाथी भी होते हैं है? शतरंज के खेल में रानी भी होती है, वजीर मंत्री। रानी की तो बात मैंने नहीं सुनी है, चलो होगे कोई ना कुछ होंगे। हाँ, जरूरत पड़े डालो, नहीं पड़े तो हटाओ। तो कभी भी वो राजा, शतरंज का जो राजा है, राजा कोई साधारण व्यक्ति होता है, लेकिन भले ही वो शतरंज में राजा हो, उसकी चेष्टा तो खिलाड़ी पर निर्भर है कि नहीं। राजा जीतेगा कि हारेगा, खिलौने के राजा पर निर्भर है कि खेलने वाले पर निर्भर? इस श्लोक को पढ़ते समय में वो दृश्य को सामने रखो। मान लो कि शतरंज का राजा हार गया, क्योंकि चलने वाले ने गलत चल दी, जिसने राजा ली रखा है, जिसके हाथ में राजा है, चाल चलने वाले ने गलत चल दी, परिणाम क्या हुआ? राजा मर गया। दुख किसको होगा? मरने वाले राजा को होगा कि खेलने वाले खिलाड़ी को होगा? खेलने वाले खिलाड़ी को होगा, क्योंकि राजा तो केवल खिलौने का है। मान लो कि खेलने वाले खिलाड़ी ने चाल में ऐसी चाल चली, इस तरह खेली, राजा जीत गया, राजा बच गया, प्रसन्नता खिलौने को होगा कि खिलाड़ी को होगा? खिलौने को न हारने का दुख है, खिलौने को न जीतने का सुख है। वो सुख और दुख से वो खिलौना असंस्पृष्ट है। खिलौने से हारना और जीतना इसके संबंध खिलाड़ी पर है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा, कुतूहलस्य करणम मत्स्यष्टितम, आपके प्रसन्नता का साधन रूप में जो खिलौना हो, मेरी जो चेष्टा है वह त्वया निश्चितम, मया यत् चेष्टितम, ध्यान देना ये शब्दों पर ध्यान देना, मया यत् चेष्टितम तत् त्वया निश्चितम, मैंने जो चेष्टा की, मैंने जो क्रिया की, जीतने की क्रिया की या हारने की क्रिया की,

खिलौने को सुख दुख नहीं होता। प्रयोगकर्ता को ही सुख दुख होगा, बाजी जीत गया, खिलौने को क्या खिलाओगे, रसगुल्ला खिलाओगे हैं? तुमने बाजी जीत ली, जीत लिया, खिलौने को क्या खिलाओगे? उन खिलौनों को तो बाजी जीतने पर भी खेलने के बाद उसी डब्बों में बंद होना है, है कि नहीं? उन खिलौने हार गए, बाजी हार गए, हारने के बाद भी उन खिलौनों को तो वही डब्बे में बंद करना है जिस डब्बे में जीतने पर बंद हुए थे, ठीक ही नहीं? बोलो, बाजी हारने वाले खिलौने कोई दूसरे डब्बे में बंद होंगे? बाजी जीतने वाले खिलौने कोई दूसरे डब्बे में बंद होंगे? लेकिन जीतने वाला बड़ा आनंद से मिठाई बांटेगा, खाएगा, और हारने वाला बैठकर रोएगा। कौन रो रहा है, कौन मिठाई खा रहा है? खिलाड़ी। तो इसी प्रकार से हे भगवान शिव शंभो पशुपते, क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम, 66वां श्लोक। संसार में जितने भी जो भी वस्तु का निर्माण किया आपने किया है, किस प्रयोजन से? खेलने के लिए, खिलौनों के रूप में सभी पदार्थों की आपने रचना की है, और इन्हीं खिलौनों के माध्यम से आप खूब खेलिए। शंभो स्वस्य कुतूहल, आनंद का खूब आनंद लीजिए, खेलिए। करणम माने साधन, मत्चेष्टितम निश्चितम, तस्मात् मामकरक्षणम पशुपते कर्तव्यमेव प्रयाम। मैं इतना ही अनुरोध करता हूं आपसे, मैं खिलौना हूं, मेरे से किस प्रकार का खेल खेलना है वह आप ही निश्चय करोगे, और मेरे से किस प्रकार की खेल खेलनी है वह आप ही मुझे खिलाओगे, चलाओगे। लेकिन आपके द्वारा परिचालित मैं हार गया, दुख तुम्हें होगा, आपके द्वारा परिचालित मैं जीत गया, आनंद तुम्हें ही होगा, और कहीं कदाचित मेरा अनुरोध इतना ही है कि खिलौने सुरक्षित रहेंगे तो आपको खेलने में भरपूर आनंद आएगा। तो आपसे मेरा अनुरोध यह है कि आप मेरे से खूब खेलिए, लेकिन अनुरोध इतना ही है, ख्याल आपको रखना है खेलते समय में टूट न जाए। खिलौना टूट गया तो जीतने और हारने का कोई सवाल ही नहीं, खेल ही, खेल की मजा ही खत्म हो गए। खिलौना टूट ना पावे, खिलौने की रक्षा खिलौना खुद करता है, खिलाड़ी करता है। तो आप खिलाड़ी हो कि खिलौने हो? आप खिलौने हो तो आपकी रक्षा खुद आप करोगे, तो खिलाड़ी कौन है? तो खिलौने की रक्षा किसके हाथ में है? तो खिलौने ने इतने कह दिया, महाराज सावधानी से खेलना, मेरे रोने से आपको आनंद आता है, मुझे खूब रुलाइए, मुझे रोने में आपत्ति नहीं है, ध्यान देना, हो मुझे रुलाकर आपको आनंद आता है तो रुलाइए, खूब रुलाइए, आपको आनंद आनी चाहिए।

0: मुझे हंसाकर आपको आनंद आता है तो खूब हंसाइए, लेकिन ख्याल ये रखना रुलाते रुलाते खिलौना टूट न जाए, फिर दोबारे मुझे रुलाना होगा तो फिर कहां से लाओगे खिलौना। समझे कि नहीं? ये भाव है भगवान के प्रति। भगवान के सामने आदिगुरु शंकराचार्य जी अपने आप को एक खिलौने के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और भगवान शिव को खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अनुरोध ये कर रहे हैं कि खिलाड़ी खेलते समय खिलौना न टूटे, इतने आप ख्याल रखो महाराज, जो खेलना है खेलो, जैसा खेलना हो खेलो। अब देख लो, कोई सिनेमा बना रहा हो और सिनेमा में हर प्रकार के पात्रों की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? सिनेमा में हर प्रकार के पात्रों की आवश्यकता पड़ेगी। रक्षा करने वाले पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी, तो चोरी करने वाले चोरों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, बोलो हैं? बोलो। सिनेमा में चोरी करने वाले चोरों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं है? रक्षा करने वाला हीरो, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो गलत काम करने वाले गुंडों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, बोलो। अच्छा काम करने वाला हीरो विलेन, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके बराबर में उसमें बुरा काम करने वाला गुंडा लोफर की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? सिनेमा में गुंडों की क्या आवश्यकता है भाई, हैं? क्या आवश्यकता है? क्यों गुंडों की भूमिका क्यों प्रस्तुत किया गया हुआ, बोलो। अब गुंडे नहीं होंगे तो हीरो अच्छा होगा? अब अंत में क्या करता है, कोई लड़की को जबरदस्ती कर रहा है कोई गुंडा, और लड़की रो रही है, और उसी समय में हीरो पहुंच गया। उसने दो चार मारी गुंडों को, और उसने उन गुंडों से उसकी रक्षा कर दी, और हीरो की वाहवाही हुई, है ना? तो गुंडे की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? सिनेमा को हिट करने के लिए गुंडों की भी तो आवश्यकता है कि नहीं, बोलो। महाभारत सीरियल को हिट करने के लिए दुर्योधन की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? और महाभारत को हिट करने के लिए शकुनी की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? सबकी आवश्यकता है। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम। वहां शकुनी की भूमिका भी आई, दुर्योधन की भूमिका भी रही, युधिष्ठिर की भूमिका भी रही, दुशासनों की भूमिका भी रही, और दुशासन द्रौपदी की साड़ी न खींचते होते फिर तुम्हारे कृष्ण को कौन पूछता है, बोलो। फिर तुम्हारा कृष्ण हीरो कैसे हो पाता? जब दुशासनों ने साड़ी खींचना आरंभ किया, द्रौपदी रोने लगी, तब भगवान साड़ी बनकर आ गए। ये भगवान की कृपा है। कब? दुशासनों की निष्ठुरता के चलते हुई कि नहीं, बोलो। भगवान की कृपा दुशासन की निष्ठुरता प्रस्तुत न होते तो भगवान की कृपा का क्या पता चलता? तो हीरो हो गए कृष्ण, तो संसार में सभी की आवश्यकता है। आपको रोना भी पड़ेगा। द्रौपदी यदि कहे, मैं द्रौपदी की भूमिका तो पूरा करूंगी लेकिन रोने का काम नहीं करूंगी, तो फिर प्रोड्यूसर निर्माता उसको द्रौपदी की भूमिका में वर्ण करेगा कि नहीं? द्रौपदी को तो रोना ही पड़ेगा, बस पड़ेगा कि नहीं, बोलो। इसी तरह दुशासन की निंदा होती है, इसलिए मैं दुशासन का काम नहीं करूंगा, तो महाभारत सीरियल तैयार होगा कि नहीं, बोलो। तुम भी दुशासन बनने को तैयार नहीं, मैं भी तैयार नहीं, कोई भी तैयार नहीं, तो महाभारत सीरियल कैसे बनेगा, बोलो। तो सबकी आवश्यकता है। कहां? खेल खेलने के लिए, नाटक करने के लिए सबकी आवश्यकता है। कभी मुझे हंसना भी होगा तो कभी मुझे रोना भी होगा। लेकिन भगवान, मैं इतने अनुरोध करूंगा, मेरा प्रयोग करके भरपूर आनंद लीजिए। शर्त यह है, मेरी रक्षा भी कीजिए। क्रीडार्थं सृजति प्रपंचमखिलं, क्रीडा मृगास्ति जना, यत्कर्माचरितं मया च भवत, प्रीत्यै भवति वत्तत। शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणम्, मत्स्यष्टितं निश्चितं, तस्मान् मामकरक्षणं पशुपते, कर्तव्यमेव त्वया। तुम्हारे द्वारा ही मेरी रक्षा होनी चाहिए, और कोई नहीं करेगा। प्रश्न करते हैं महाराज हमसे आकर, बहुत लोग प्रश्न करते हैं, दूसरों को रुलाकर ये कौन सा खेल खेलता है परमात्मा भाई? ये भी कोई खेल होता है दूसरों को रुलाकर? प्रश्न करते हैं। दूसरों को मारकर खेलना भी कोई खेल होता है? लेकिन कंस को मारे बिना महाभारत होगा है? बोलो, कंस को मारे बिना महाभारत होगा? द्रौपदी को रुलाए बिना महाभारत होगा? है? द्रौपदी के पांच सोए हुए बच्चों के सिर काटे बिना महाभारत होगा? और तुम प्रश्न करते हो कि ये कहां का नियम है भाई, दूसरे के बच्चों को मारा और महाभारत बना दी? द्रौपदी के सोए हुए पांच बच्चों को अश्वत्थामा द्वारा सिर काटा कि नहीं किया? काट दिया है? काटना पड़ा कि नहीं, बोलो। और अश्वत्थामा का सिर मुड़ाना पड़ा कि नहीं, मणि उतारना पड़ा कि नहीं? अच्छा लगा होगा अश्वत्थामा को? तुम लोगों ने किसी ने विरोध किया अश्वत्थामा का सिर की मणि को मत निकालो करके? हैं? विरोध किया? करना चाहिए, किसी ने आवाज निकाली? अच्छा किया, सोए हुए बच्चों को मारा था, द्रौपदी के सोए हुए बच्चों को मारा था, अर्जुन ने ठीक किया, मणि उतार दी। तुम खुश हुए कि भी नहीं बोलो? हैं? तुम खुश हुए कि नहीं? हैं? इसीलिए इतना ही समझना भाई, अपने को भगवान के द्वारा उत्पन्न किए हुए खिलौने से ज्यादा नहीं समझना। और अपनी दिनचर्या और चेष्टा में भगवान के संकल्प के अतिरिक्त अपना कोई संकल्प जोड़ना नहीं, अपना पूर्वाग्रह नहीं करना। समस्या कब होती है? हमको खिलौने के रूप में परमात्मा प्रयोग कर रहा है और अपने संकल्प के अनुसार वो हमको चला रहा है और हम उसकी इच्छा विपरीत हम अपना पूर्वाग्रह लेते हैं। नहीं, तुम्हारे चलाने से नहीं, हम जैसा चाहते हैं वैसा चलाओ। ये खिलौना कहीं कभी पूर्वाग्रह करता है? बोलो, खेल में कोई भी खिलौना पूर्वाग्रह करता है? मुझे हाथी के द्वारा नहीं मरवाओ, मुझे राजा के द्वारा मत मरवाओ, कहता है शतरंज का खिलौना। चाहे सेना से मरवाओ, चाहे हाथी से मरवाओ, जिसे मरवाना है मरवाओ, बचाना है बचवाओ, बस खत्म हो गई बात।
1: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahima, presented by Swami Santoshi Mataji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: उन्होंने कह दिया, तुम्हें दे दिया, तो तुमने स्वीकार कर लिया कि सचमुच वो अग्नि तुम्हारे हाथ में आ गई, ऐसा तुमने मान लिया, उस पर विश्वास कर लिया। विश्वास करने जैसा कोई लक्षण तुमको दिखता है? बुद्धि भ्रमित कर दी, तब जरा परीक्षा तो कर लो कि सचमुच तुम्हारे हथेली में अग्नि आई है अथवा नहीं आई है। ये आग तुम्हारे पास आई कि नहीं, जरा इसकी तुम परीक्षा तो कर लो। भगवान शिव के संदर्भ में ऐसा कहकर श्री हरि ने युक्ति के अनुसार भस्म वो अग्नि हाथ भस्मासुर के स्वयं अपने मस्तक पर रखवा दिया। जैसे अपने मस्तक पर रखा तो उसके साथ ही वो भस्मीभूत हो गया। तो कहने का अर्थ था, भगवान शिव वरदान देने में जिनके नेत्र में ऐसी अग्नि है, त्रनेत्रधारी त्रिलोचन भगवान शिव है। बेधक प्रयत्न, ये अग्नि इतनी अग्नि है कि जिस अग्नि का प्रभाव कामदेव ने अपने प्रभाव में आकर ब्रह्मा में अपना प्रभाव दिखाया, ब्रह्मा जी को संध्या के पीछे दौड़ा दिया। इंद्र में अपना प्रभाव दिखाया, अहिल्या का सतीत्व नष्ट कर दिया। और विष्णु में अपना प्रभाव दिखाया, तुलसी के साथ संबंध करा दिया। और इस प्रकार अपने प्रभाव से प्रभावित करके बड़े बड़े देवताओं को भी पराभूत कर देने वाला काम आज चाहता है कि मैं शिव पर विजय प्राप्त कर लूं, शिव के ऊपर मेरी जीत हो जाए। और ये सोचकर बाणों वृक्षों के पीछे छुपकर पुष्प बाणों से प्रहार करने लगा भगवान शिव के ऊपर। बिना किसी ऋतु के सुंदर ऋतु का आगमन हो गया और सभी कामदेव के प्रभाव में आकर के सभी हिमालय उसके प्रभाव में से ऐसा प्रभावित है कि सब उससे मुग्ध हो रहे हैं। परंतु भगवान शिव हैं कि उन्होंने नेत्र खोल करके जब देखा भगवान शिव ने और पाण प्रहार किए कामदेव के इस कृत्य को देखकर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्मीभूत कर दिया, समाप्त कर दिया, जलाकर राख कर दिया। अर्थात शिव के नेत्र के तीसरे नेत्र का ये प्रभाव है। अर्थात ऐसे भगवान शिव जिनकी शरण में जाकर के और बार बार देवताओं की प्रार्थना करने पर और शरीर उसे जीवित रहने का वरदान देने वाले भगवान आशुतोष चंद्रमौली चंद्रचूर चंद्रनाथ प्रभु त्रिनेत्रधारी हैं। याद रखना ये शिव जो तीन नेत्रों वाले हैं ये शिव कहीं नहीं है, ये शिव आपके स्वरूपस्थ हैं, आपके स्वरूप में हैं, आपके अंदर बैठे हुए हैं। शिव स्वयं इस जीव इस मनुष्य इसके अंदर सचराचर चर और अचर में व्याप्त होते हुए भी सगुण साकार स्वरूप से प्रत्यक्ष रूप से सभी के हृदय में विराजने वाले शिव के विषय में श्रवण करके कानों से शब्दों के माध्यम से मंत्र के श्रवण के माध्यम से शिवत्व हमारे हृदय में शिव स्वरूप शिव का दर्शन अपने भीतर कहाँ होना चाहिए, बोले भाव सरोरो भाव रूपी कमल के अनुसार हृदय रूपी कमल है और इस हृदय रूपी कमल के आसन पर विराजमान सदा शिव को अपने हृदयस्थ करें, हृदय में रखें। और ऐसे शिव आपके हृदय में आकर के जब विराजमान हो जाएंगे तो उनसे आपका पाप ताप संताप हरण करने वाले भगवान शिव का नाम है हर, हरति पापम हरति दुखम हरति दारिद्रम, जिस जो आपकी दरिद्रता को हर ले, आपके जन्मार्जित अनेक जन्मों में जो आपने पापार्जित किए हैं उन पापों को हर ले, आपकी दरिद्रता को हर ले, आपकी दुर्बलता को हर ले, आपके अज्ञान को हर ले, उन सब का हरण करने वाले कौन है, बोले शिव है। ये शिव क्या, भगवान शिव केवल इतना ही नहीं करते कि आपको लक्ष्मी प्रदान करते हैं, सुख समृद्धिशालीवान बनाते हैं, आयुष्य वर्धन करते हैं आपका, केवल इतना ही नहीं है। शिव कौन है, सर्व विद्या नामधीश्वरम। ये कैसे हैं भगवान शिव, बोले ये सर्व विद्या नामधीश्वरम, ये सारे विद्याओं के अधीश्वर हैं। ऐसी कौन सी विद्या है जो भगवान शिव से छुपी हुई हो, भगवान शिव जिसके अधिष्ठान न हो, शिवारंभ नहीं हो, शिव से सदा शिव समारंभम, सदा शिव से आरंभ होने वाली विद्या का नाम ही तो याद रखना ब्रह्म विद्या है। इसलिए भगवान शिव सर्व विद्या नामधीश्वरम। यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो किससे होगी, बोले भगवान शिव से होगी, विशुद्ध ज्ञान दे आया। जिनका शरीर केवल केवल ज्ञानमय है, ज्ञान ही जिनका शरीर है, शिव क्या है, ज्ञान है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। ये सत्य ज्ञान, सत्य क्या है, शिव है, ज्ञान क्या है, शिव है, अनंत क्या है, शिव है, अनंत क्या है, ब्रह्म है। अर्थात सत्य कहो, ज्ञान कहो, अनंत कहो, ब्रह्म कहो, ये सब शिव के नामों के पर्याय हैं। भगवान शिव के ही ये सारे नाम हैं, इसलिए ऐसे भगवान शिव जो स्वयं ज्ञानमय हैं और उनकी सत्ता ही शिवा है। शिव ज्ञान है, सत्ता शक्ति है, प्रकृति है, और बिना ज्ञान के सत्ता कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, और बिना सत्ता के ज्ञान निर्गुण चाहे कुछ करना तो बिना सगुण के कुछ नहीं कर सकता, और सगुण चाहे कि मैं कुछ करूं तो बिना निर्गुण के, बिना ज्ञान के कुछ नहीं कर सकता। अर्थात जब ये दोनों परस्पर मिलते हैं, दोनों परस्पर मिलते हैं और इनमें गति होती है, नाग का अर्थ गति भी होती है। संस्कृत में नाग का अर्थ है नाग, न अ ग, अर्थात जिसमें गति, जिसमें स्पंदन, जिसमें गति हो रही है। नाग का मतलब अध्यात्म में है गति, अर्थात ये गति किससे है, ये जगत की सृष्टि की जो गति चल रही है ये शिव शिवा के स्पंदन से। जब शिव शिवा में, काम कामेश्वर में जैसे समुद्र में तरंग उठती है, उसी प्रकार शिव शिवा में जब एक तरंग स्पंदन उठता है तो उस संसार, उससे सकल संसार उत्पन्न होता है जगत में। अर्थात यदि शिव शिवा के साथ मिलन न हो तो इसलिए ये जगत का कार्य नहीं हो। इसीलिए कहा है जगत माता भगवती पार्वती है, जगत पिता भगवान शिव है। शिव ही सबके जगत पति हैं, ये सबके पति अर्थात जगत पति, जगत भुवन के स्वामी भगवान शिव है। इसके नाग का अर्थ जो गतिमान है, जिसमें स्पंदन है, गति है, क्रिया है, और वो अक्रिय भी है। क्रिया क्रियो दक्ष, आप महिमन स्तोत्र में पाठ करते हैं, जो क्रिया में और अक्रिया में दोनों में दक्ष है वो कौन है, बोले शिव है। जो क्रियाशील भी दिखाई पड़ता है, अर्थात जब प्रकृति के साथ शिव स्वयं अपने आप से प्रकृति को प्रकट करके प्रकृति के साथ दिखाई पड़ता है, तब शिव में क्रिया दिखाई पड़ती है, गति दिखाई पड़ती है, और इस गति का नाम ही, और ये गति कैसे है, कैसे ही गति है, बोले नागिंद्र हारा है गोल गोल। आप कहते हैं ब्रह्मांड गोल है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही गोल है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा कर रहे हैं ये भी गोल हैं। ये सब गोल गोल जो आप कहते हैं यही तो नागहार है नारायण, यही हार है। अर्थात इस प्रकार जो भगवान शिव नित्य हैं, सनातन हैं, ऐसे पवित्र नाम का स्मरण करने से, शिव नाम के शिव शिव कहने से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि शिव नाम लेने में ही बड़ा परहेज करते हैं, अन्य आश्रय आ जाएगा, हम तो शिव का नाम नहीं लेंगे। पर वो भले आदमी कभी विष्णु नाम पढ़ते, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते होंगे, तो सर्व सर्व शिव ये सारे नाम भगवान श्री हरि के लिए भी आए। भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम में सर्व सर्व शिव ये सब नाम उसमें है। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि समस्त भेदभाव को छोड़ करके, इस छोटे से मंत्र को, छोटे से नाम को यदि हम अपने जीवन में, अपने मन को स्थिर करने के लिए, इस पर मुझे एक दक्षिण के संत की का स्मरण हो रहा है, अयप करके अरिअप्प करके एक संत हुए हैं जिसे अप्पा भी कहते हैं। बड़े अच्छे शिव भक्त थे और उन वेदांत की बड़ी निष्ठा थी और वेदांत का पठन पाठन करते थे, शिष्यों को पढ़ाते थे और हमेशा वो शिव शिव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते थे। एक दिन उनके वेदांत पठन पाठन का उनका कार्य था, वेदांत पढ़ते थे पढ़ाते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने कहा, महाराज आप पढ़ाते तो वेदांत हैं पर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आप ये जपते रहते। तो उन्होंने कहा कि इस मंत्र में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। सकल सृष्टि की जैसे संपूर्ण वृक्ष एक नन्हे से बीज में समाया हुआ होता है, उसी तरह से ब्रह्मांड नायक की शक्ति केवल इस छोटे से मंत्र में है, इसलिए इसे जपता। पर उसे बात को समझ में नहीं आई। जब समझ में नहीं आई तो उन्होंने कहा कि इसे इतनी ताकत है इस मंत्र में कि ये जड़ को चेतन कर दे। जड़ को चेतन कर दे, तो शिष्य ने कहा, महाराज जड़ को ये चेतन कर देगा तो क्या ये नंदी इसको भी चेतन कर देगा? बोले हाँ इसको भी चेतन कर देगा। उन्होंने कहा, तुम अच्छा तो ऐसा करो, नंदी के आगे घास रख दो। नंदी के आगे उन्होंने घास रखवा दिया और स्वयं अपने आप नमः शिवाय जप करने बैठ गए। और शिष्य ने सोचा कि महात्मा लोग कुछ ऐसा कर देते हैं, कहीं घास को इधर उधर कर देंगे, किसी युक्ति से हमें समझा देंगे। तो इसलिए शिष्य ने सोचा मुझे भी यहाँ से हटना नहीं है, और वो भी वहीं पर जम करके बैठ गए ये देखने के लिए कि क्या सचमुच ये नंदी घास खाता है। और वो नमः शिवाय जप करते करते सुबह से शाम हो गई, मंदिर के पट बंद हो गए और वो खुद भी अंदर बैठा हुआ है और महात्मा जी भी जप कर रहे बैठे। उन्होंने कहा तुम भी जप करो नमः शिवाय, उससे उसे भी जप कराते रहे और खुद भी बैठकर जप करते रहे। मंदिर के पट बंद हो गए हैं, नमः शिवाय जप रहे थे वो, तो जपते जपते रात हो गई। जब सवेरा हुआ तो देखा कि नंदी के आगे जो घास पड़ा हुआ था वो घास वहां पर कुछ भी नहीं है, सामने कोई घास नहीं था। उसे लगा कि ये घास आखिर गया कहाँ, मंदिर के पट बंद हैं, मंदिर के अंदर कोई आया नहीं है, किसी का प्रवेश नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ, और मंदिर के नंदी के आगे रखा हुआ सारा घास यहाँ नहीं है, खाया गया है। बड़ा आश्चर्य हुआ और इतने में पीछे की ओर देख झांका उसने तो नंदी के पीछे बहुत सारा गोबर वहां पर जब देखा तो उसे पूरा पूरा विश्वास हो गया कि ये नंदी ने ही ये घास खाया है। तो महात्मा ने उसे ये बताया कि जड़ को चेतन कर देने वाली ताकत, ये ताकत इस मंत्र में है। मंत्र शक्ति, मंत्रों की शक्ति को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इन मंत्र के बल पर, मंत्र ताक के बल से बहुत बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए सानारण जीवन में परिवर्तन हो सकता है। और इन मंत्रों को श्रद्धा के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए और सुनने के साथ साथ मंत्रोच्चारण करना चाहिए, उसका उच्चारण करें शब्द, और उसके साथ जब वो अंदर भीतर की ओर पहुंचता है तो हमारे अंदर वो मंत्र मन को परिवर्तित करता है। इसलिए छोटा सा मंत्र है, इसका सदैव जप करें, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ति नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय, नागों का हार बनाने वाले त्रिनेत्रधारी जो भगवान शिव हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, अर्थात वेदत्रय यही तीन नेत्र हैं, सूर्य चंद्र और अग्नि ये भगवान शिव के तीन नेत्र हैं, और भगवान शिव ती का जो तीसरा नेत्र है ये अग्नि के रूप में है जो सदैव बंद रहता है। केवल प्रलय काल में भगवान शिव जब जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तब तब सृष्टि में प्रलय हो जाता है। पर याद रखना ये जो तीसरा नेत्र है भगवान इस नेत्र से सृष्टि के कार्य को संपादित करते हैं। ये जो तीसरा नेत्र है अध्यात्म की दृष्टि से थोड़ा सा विचार करें तो ये नेत्र केवल शिव के पास ही नहीं ये आप सब लोगों के पास भी है। दिव्यम मे ददामि चक्षु, भगवान कहते हैं मैंने ये तीसरा नेत्र दिया है। तीसरा नेत्र हम लोगों के पास भी है पर हम इस नेत्र का उपयोग ही नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? बोले इसलिए नहीं करते हैं कि हमें दो नेत्र के उपयोग से फुर्सत मिले तो तीसरे की कहीं सोचे। हमें तो दो के नेत्र उपयोग से ही फुर्सत नहीं मिलती, हम तीसरे के लिए सोच ही नहीं पाते। यदि हम थोड़ा गंभीरता पूर्वक सोचें जो तीसरा नेत्र है उस नेत्र के ऊपर बंद रखने से ना एक आवरण आया हुआ है, वो नेत्र का आवरण हटे, वो नेत्र ज्योति जो उसके अंदर दिव्यता है ज्योति है वो जागृत हो, उसके लिए वो आवरण कैसे हटाएंगे? बोले वो हटेगा भगवान के नाम का जप करने से। इसलिए मैंने कल ही आपको कहा था कि हमें भगवान की कथा नाम स्मरण सुनना चाहिए, वाणमय महिमा को सुने, ये उनकी कीर्ति को सुने। सुनने से एक बार एक मित्र अपने मित्र से मिलने के लिए गया, देखा मित्र का घर का दरवाजा बंद है, उसने दरवाजे में दस्तखत दिया दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा बंद है तो इसका मतलब मित्र तो अंदर ही है, दरवाजा खुला नहीं, उसे चिंता बढ़ी। उसने दोनों तरफ देखा कहीं कोई रास्ता दिखे तो उसे एक छोटा सा दरवाजे के ऊपर रोशनदान दिखाई पड़ा। उस रोशनदान तक वो पहुंचा चढ़कर और दरवाजे के सारे रोशनदान से कमरे में उतर गया। जब कमरे में उतरा तो देखा कि उसका मित्र तो अचेत अवस्था में ज्वर में पड़ा हुआ है। उसने अपने मित्र को जल पिलाया, जल दिया, छींटा दिया, दवाई दी, उसे धीरे धीरे उसका ज्वर उतर गया, मित्र स्वस्थ हुआ। उसने अब अपने मित्र से पूछा, मित्र तुम ये बताओ तुम्हारे लिए मैंने दरवाजा तो खोला नहीं था पर तुम कमरे में कैसे पहुंच गए, कैसे तुम कमरे में आए? तो मित्र ने उत्तर दिया कि मित्र दरवाजा तुमने नहीं खोला तो क्या, तुम्हारा ये जो रोशनदान खुला हुआ था ना इसी से मैं तुम्हारे कमरे में पहुंच गया। भगवान कहते हैं ठीक इसी तरह से यदि तुमने हृदय का द्वार मेरे लिए नहीं खोला है बंद है तो कोई बात नहीं, यदि कानों का द्वार खुला है तो इस कर्ण रंध्र से कर्ण द्वार से ही मैं तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाऊंगा। भगवान को अपने हृदय में लाने का अर्थात अपने भीतर भगवान को प्रवेश कराने का जो द्वार है वो केवल कान है नारायण। इसलिए सोचना श्रोत्रम इन कानों से भगवान हृदय में आते हैं। कैसे आते हैं? बोले शब्द बनकर, इसलिए वाणमयिक रूप भगवान का कहा, शब्द के रूप से भगवान आपके हृदय में आएंगे। तो ये शब्द है नमः शिवाय। इस नमः शिवाय शब्द से ही भगवान आपके हृदय में पहुंच जाएंगे और जब हृदय में भगवान आ जाएंगे तो जीव के जन्म जनन के अभिमान को जन्म जन्म की कर्म वासना को सब को निकाल कर दूर कर जीव की मूर्छा को दूर कर उसे सचेत कर देंगे अर्थात भगवान शिव को पा करके शिव के दर्शन करके शिव को पहचान करके। इसलिए कि यस्मिन विज्ञातम, जिसके ज्ञान से ब्रह्मेव होती, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, वो उस शिव को पहचानने वाला स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप ही है, ऐसा आपको उस नाम से बोध होगा नारायण। इसलिए जप में बहुत बड़ी ताकत है और जप के साथ जो आप बोलते हैं उन शब्दों का अर्थ साथ में लें, अर्थ सहित यदि आप उसे ग्रहण करेंगे तो निश्चय रूप से परम लाभ होगा। यदि अर्थ छोड़ करके, अर्थ को ध्यान में रखे बिना आप केवल जप करेंगे उससे आपको पुण्य की प्राप्ति तो होगी पर याद रखना रस की, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और रस कब आएगा? जब आपको अर्थ ध्यान में रहेगा तो निश्चित रूप से उस जप से आपको एक रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। तो इसलिए त्रिनेत्रधारी तीनों नेत्रों को धारण करने वाले ऐसे भगवान त्रिलोचन कैसे हैं? नागिन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंग रागाय, जिन्होंने भस्म को अपने शरीर में धारण किया हुआ है, जो सारे शरीर पर भस्म धारण किए हुए हैं। ये भस्म क्या है? बोले ये भस्म है कि इस असार संसार को, संसार को जब जला दिया तो रहा क्या? बोले रहा केवल एक भस्म ही तो बाकी बची। संसार का सार क्या है? संसार का सार तो केवल एक भस्म है नारायण। जो सार रूप को ग्रहण करने वाले हैं, जो संसार के सार को अपने शरीर में जिन्होंने धारण किया हुआ है, अर्थात यही भस्म है। ये भस्म बड़ी पवित्र भस्म है। बोले इस भस्म को जिसे विभूति कहते हैं, भस्म कहते हैं, ये भस्म यूं तो कहने पर हमें बड़ा वो लगता है कि चिदा भस्मालेपो, चिदा का भस्म। वास्तव में आप विचार कर करके देखें, जब शरीर जो पंचभूतों का बना हुआ था और उस पंचभूतों के शरीर को जला करके जब जल गया तो बचा क्या? बोले केवल राख। और उस राख को भगवान शिव ने अपने शरीर पर धारण किया। बोले इतनी अपवित्र वस्तु? नहीं नहीं, ये तो ज्ञान से विचार करो, भस्म के समान पवित्र और कोई दूसरी वस्तु नहीं। इसलिए दक्षिण में कुछ ऐसी परंपरा है, कुछ शिवोपासक ऐसे हैं कि जो बिना भस्म के जिसका दर्शन अशुभ मानते हैं। अर्थात यहाँ तक कि वहाँ तो ऐसी भी परंपरा है कि चाहे सदु भस्म कौन नहीं धारण करेगी? बोले सब भस्म धारण करेंगे। ये किसके भस्म है? ये जगतपति की भस्म है। जगतपति इसे धारण करते हैं, अर्थात जिसका कोई पति है, माने पति माने जो जिसकी पत रखने वाला है, जो तुम्हें अपनाने वाला है, जिसका कोई नहीं है, अर्थात सधवा स्त्री उस भस्म को धारण करेगी जो विधवा होगी। बोले वो नहीं धारण करेगी, उसका पति ही नहीं है तो कैसे धारण करे? धारण तो वही करेगा जिसका कोई पति परमेश्वर होगा, अर्थात कोई पति होगा। ये इसको एक चिन्ह के रूप में मान लिया गया, इतना पवित्र माना गया। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था, ये पवित्र भस्म, ये जो पवित्र भस्म है, यज्ञादि से प्राप्त होने वाली संसार में जो सत्कर्म है, उन सत्कर्मों से जो अवशेष रहता है, बाकी बचता है, सारा कर्म किया और कर्म होने के बाद फल हो दे दिया, फल होने के बाद उस कर्म से बचा क्या? बोले केवल भस्म। समग्र कर्मों का जो सार है वो क्या है? बोले वही तो भस्म है। इसलिए जल रीति भस्मम, वायु रीति भस्मम, अग्नि रीति भस्मम, ये सबसे बचा हुआ पृथ्वी रीति भस्मम, पंच तत्वों से बचा भस्म और सब कर्मों से बचा ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर और पंच ज्ञानेन्द्रिय पंचीकृत से बना हुआ है जगत, इन सब का जो सार है वो तो केवल एक भस्म है। जो सार को ग्रहण करने वाले देव हैं, बोले वो कौन है? भगवान शिव हैं। ऐसे शिव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हम सबों के लिए शिव परम कल्याणदायी हों। इन्हीं शब्दों के साथ अभिवाणी को विराम देती, बोलिए हरिओम तत्सत।

वंदे गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। हमारे पीछे बोलना सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर् भवतु मे सदा निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां

ദക്ഷിണാമൂർത്തിദേവം ജനന മരണ ദുഃഖഛേദദക്ഷം നമാമി. ജനന മരണ ദുഃഖഛേദ ദദക്ഷം നമാമി. ജനന മരണ ദുഃഖ ഛേദ ദക്ഷം നമാമി. ഐ സല്യൂട്ട്, നമസ്കാര കരുച്ചു, പ്രണാം കർ രഹാ ഹൂ. കിസ്കോ പ്രണാം കർ രഹേ? ജോ യേ സ്പെഷ്യൽ കാം കർത്തേ ഹൈ. ജനന മരണ ദുഃഖ, ജനന മരണ ദുഃഖ ഛേദ ഉച്ഛേദ, അർത്ഥ ഹോതാ ഹൈ നാശ കർനെ വാലെ. യഹാ ദോ ദുഃഖ മുഖ്യ ഹൈ, ജന്മ ഓർ അന്തിം ദേഹ വികാര ഹൈ, ഭാവ വികാര ഭി ഹൈ, വോ ക്യാ ഹൈ? മരണം. ജായത്തെ അസ്ഥി വർദ്ധത്തെ വിപർണമത്തെ അപക്ഷീയത്തെ വിനശ്യതി ഇതി. ജായത്തെ വിനശ്യതി. തോ അബ് ദേഖിയെ, ദോനോ പീഡാകര ഹൈ. ബച്ച ജബ് പേദാ ഹോതാ ഹൈ തോ ദുഃഖ് സേ ഗുജർതാ ഹൈ, വോ ഭി റോ രഹാ ഹൈ, മാ ഭി റോ രഹി ഹൈ. ഓർ ജബ് യേ ശരീർ ഛൂട്ടേഗാ തോ ഛൂട്ടനെ തക് ദുഃഖി ദുഃഖ ഹൈ, രോഗ ഭി ദുഃഖ ഹൈ. ये सब ऋतुआ भी दुख देती है, बहुत वर्षा हो गई दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है. सो कहते हैं सुरेश्वराचार्य, देह दुख उपादानम. जहां भी स्थूल शरीर का संग होगा वहां दुख अवश्य होगा. ये प्रारब्ध में भी जो लिखा है वो शनि दशा किसको मिलेगी? इसी को तो मिलेगा. ये शनि दशा भी शरीर की होगी और आप दुखी होगे उसके कारण. तो ये शरीर मैं हूं तो शरीर के सब अवस्था का दुख मुझे होता है. तो यहां कहते हैं कि कौन ऐसा है जो इस दुख का उच्छेद करने वाला है. उच्छेद का अर्थ होता है फिर कभी ना आए ऐसा. डॉक्टर लोग भी एक सुई देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, कितना भी शरीर में दर्द हो वो सो जाएगा. शरीर में दर्द चालू रहेगा, यहां दर्द महसूस होता नहीं है. इसलिए अंडर क्लोरोफॉर्म ऑपरेशन कैन बी डन. आपको एक बार सुला के ऑपरेशन कर सकते हैं. तो शरीर और मन का जो संयोग है उसको थोड़ी देर के लिए उच्छेद कर सकते हैं, पर फिर क्या होगा? चालू हो जाएगा. जहां क्लोरोफॉर्म की असर कम हो गई वो चालू हो जाएगा. तो ये दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं है. दुख का क्या है? थोड़ी देर के लिए विश्राम. हमारे प्रातः स्मरणीय महाराज श्री कहा करते थे, इस संसारी लोगों को जो थोड़ा आराम मिलता है संसार में वो तो ऐसा है कि भार का वहन करने वाला व्यक्ति रास्ते में एक दीवार बनाई होती है जिस पे वो अपना भार सीधा वहीं रख दे, पानी पानी पिए, चाय वाय पिए, फिर बाहर को अपने सर पे ग्रहण करता है. ऐसा ही है एक घंटे का सत्संग. निर्भर हो गए फिर वापिस गए तो क्या हो गया? मारा गया.
को सिम्टोमेटिक रिलीफ। आप लोग को मालूम होगा सर्दी की सर्दी हो जाए तो 7 दिन में ठीक होता है और दवा लो तो 1 हफ्ते में ठीक होता है। मानी उसकी कोई दवा है ही नहीं। वो लोग कभी नहीं कहेंगे ये सर्दी का इलाज है, ये दवा वाले नहीं बोलेंगे, इस सर्दी में आपको राहत मिलेगी। किससे राहत मिलेगी? आपके पैसे से आपको राहत मिलेगी, वो लोग कमाएंगे उसमें, और क्या राहत मिलेगा। सो दिस ऑल, तो यहां क्या है, जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि, उसमें दक्षता है। क्या दक्षता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी दुख की आत्यंतिक निवृत्ति करने वाले, ये कौन है? दक्षिणामूर्ति मीरे, दक्षिणामूर्ति देवम। और क्या कहा उन्होंने? त्रिभुवन गुरुमीशम ज्ञान दाता रमारात। और जो शिष्य को, जो उनके शरण में आए हैं ऐसे शिष्य को भगवान दक्षिणामूर्ति शीघ्र ही ज्ञान प्रदान करते हैं। 2 प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, एक में तत्काल लाभ और दूसरे में 3 महीने के बाद लाभ मालूम पड़ेगा। इसको कहते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अभी लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ और 3 महीने के बाद क्या होगा? कुछ होगा। और ये क्या है? तत्काल, क्योंकि सर्प का जो भय है वो दंडे से जाएगा। कितना रज्जू में जो सर्प की भ्रांति जनक जो दुख है, सर्प की भ्रांति हो गई, बड़ा बड़ी भय हो गया, दुख हो गया, और उस भय की निवृत्ति दंडे से होगी, मंत्र से होगी, ध्यान से होगी, किससे होगी? हाँ, उसकी निवृत्ति सिर्फ सर्प जिस अविद्या के कारण प्रतीत होता है उस अविद्या की निवृत्ति के बिना नहीं हो सकती है। उसका कारण का ही नाश करना पड़ेगा। तो हम जिस कारण से दुखी है वो क्या है? अपने स्वरूप का न जानना। उस अविद्या को जो दूर करता है वो क्या है? ज्ञानदाता रमारा। और ज्ञान वो ऐसा है, उपदेश मात्र

हुआ बेटा डाली गिरी, दोनों कैसा हुआ? युगपत एक साथ। ये नहीं कि अभी ज्ञान हुआ फिर जाके ध्यान करेगा फिर कुछ ना कुछ करेगा, ऐसा नहीं है। इमीडिएटली रिलीफ फ्रॉम पेन वंस एंड फॉर ऑल, तत्काल ही सभी प्रकार के दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति। वो ज्ञान दाता हमारा। अभी आगे कहते हैं कौन जो है इस संसार निवृत्ति चाहता है, सभी लोग संसार निवृत्ति चाहते हैं, पर कौन लोग ऐसे हैं जो ये भी जानते हैं कि संसार निवृत्ति किससे होगी? पाया दुनिया के लोग अपने को बहुत समझदार मानते हैं, ये संसारी लोग अपने को बहुत समझदार मानते हैं। बाबा जी को क्या मालूम है दुख कैसे दूर होगा, हम लोग जानते हैं सिंगापुर जाने से दुख दूर हो जाएगा, चौपाटी पे जाने से दुख हो जाएगा। हाँ महाराज मजा तो वही लिखा है, ये तो हम ये लोग क्या जाने, ए मजा आ गई, एक गोली लिया दम मारो दम मिट जाए। तो आप लोग भी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। अरे वृंदा ऋषिकेश में एक महात्मा थे, रोज वो भांग लेते, भांग मालूम है ना, अफीण। वो कहते आप लोग तो वेदांत क्या, हम तो एक लेते गोली सीधे ब्रह्म में पहुंच जाते हैं और फिर वापिस भी आते हैं। आप लोग ब्रह्म से वापिस आते, ब्रह्म में जाके वापिस आता है, ब्रह्म रिटर्न आनंदा। सो ये ऐसा है, रिटर्न भी हो जाता है। वो अपनी बोध के अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव अंधे नैव यतमाना यथांदाः नियमाना यथांदाः अंधे नैव नियमाना यथांदाः। किसी अंधा ने कहा हमको रास्ता नहीं दिखता है दिखाओ, और दूसरा अंधा ने कहा मैं दिखाऊंगा, ये अंधा को दिखता नहीं कि ये अंधा है, और वो अंधा बोलता नहीं कि मैं अंधा हूं और कहता मैं आपको ले जाऊंगा। दोनों अंधे कहां जाएंगे, ये इसके पीछे पीछे जाता है। नियम माना यथांधा, नजीक के जो सबसे बड़ा कुआं है उसमें गिरेंगे दोनों। इसी प्रकार के संसारी लोग दूसरे संसारी को कहते हो ये अध्यात्म विद्या मंदिर छोड़ो, मैं तुमको बताऊंगा ये दुख का उपाय क्या है, जल्दी से शादी कर ले बस सब दुख दूर हो जाएगा, जल्दी से ये काम कर ले विदेश के लिए तू चला जा तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। वो अपने को बड़े बुद्धिमान समझते हैं और दुख की दवा अपने पास है ये मानते हैं। किसी बाप ने मरते समय बेटे को कहा कि बेटा तू शादी मत करना, मैं बहुत दुखी हुआ और मेरी ये बात अवश्य मानना। तो बेटा ने कहा जरूर, उसकी शादी नहीं हुई थी उस समय। उसने कहा महाराज मैं भी मरते समय मेरे बेटे को यही उपदेश करके जाऊंगा। तो ये क्या है, दुख छूटना चाहते हैं मुमुक्षु सब है, मोक्षो में भूयात, मैं दुख से छूटूं, पर उपाय जो है वो नहीं जानते हैं, अपनी बुद्धि से परिकल्पित उपायों में ही लगे हैं। पैसा मिल जाएगा दुख दूर हो जाएगा, यश मिल जाएगा दुख मिल हो जाएगा, बड़े बड़े लोगों की पहचान हो जाएगी उसमें दुख दूर हो जाएगा। ये सब क्या है, मूर्खता की पराकाष्ठा। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको मालूम पड़ा ये दुख की दवा नहीं है, ये दुख का कारण है संसार, तो उस दुख की निवृत्ति के लिए उनको मालूम पड़ा तत्व ज्ञान आत्म ज्ञान ही उसकी दवा है, इसलिए सगुरु मेवा बिगच्छे। ऐसे लोगों का नाम है संस्कृत में मुनि, मननशील, जो
उचित रूप से

विचार करता है सकल मुनि जनानाम, ऐसे जो तत्व जिज्ञासु है उनको दक्षिणामूर्ति तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहते हैं ये दक्षिणामूर्ति कैसे है। त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम। त्रिभुवन भूहु भुवः सुवः, यह लोक परलोक और उसको जोड़ने वाला बीच में अंतरिक्ष, ये तीन ही है, दिस वर्ल्ड अदर वर्ल्ड इन बिटवीन। ये तीनों लोक में लौकिक लोक में रहने वाले जो है ये है मनुष्य, देवता, दानव और नारकी जीव, इसमें सब आ गए। मनुष्य गंधर्व, देव गंधर्व, भूत प्रेत पिशाच, ऋषि लोक, सत्य लोक में ऋषि लोक रहते हैं, ये सब जो है इंद्र देवताओं का राजा, ये सबको गुरु की जरूरत है। इंद्र के गुरु का नाम क्या है? बृहस्पति। असुरों के गुरु का नाम क्या है? शुक्राचार्य। पर ये सब गुरुओं का भी गुरु कौन है? तो कहते हैं दक्षिणामूर्ति मीरे। दक्षिणामूर्ति सकल त्रिभुवन गुरु मीशम, और दूसरी बात यह है ये तीनों भुवन को बनाने वाले भी हैं। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति उसी से आता है, ये भूहु भुवः सुवः ये सब लोग भी उससे प्रकट हुए हैं, सृष्टि कर्ता भी वही है। देखो हम उपासना करते हैं ईश्वर की या तो सृष्टि कर्ता के रूप में ब्रह्मा जी और सरस्वती, या तो सृष्टि के पालन करने के रूप में लक्ष्मी और महाविष्णु, या तो जगत का उपसंहार, याद रखना संहार मत कहना बहुत गड़बड़ हो जाती है, भगवान शिव उपसंहार करते हैं, रिजोल्यूशन जो प्रकट हुआ है उसको अपनी कारण अवस्था में लीन करना, अंकुर फिर बीज बन जाता है, इसी प्रकार के उपसंहार करता भगवान कौन है? रुद्र या काली काल शक्ति और भगवान शिव महाकाल, ये तीनों ईश्वर है। ब्रह्मा ब्रह्माणी, विष्णु वैष्णवी शक्ति, शिव पार्वती, ये सब कौन है? ईश्वर है। पर एक ईश्वर ऐसा है जो ईश्वर भी है और आचार्य के रूप में ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उपदेशक कर्ता, जगत कर्ता, जगत धर्ता, जगत हर्ता। पर एक अवतार ऐसा है, ये तीनों तो है और साथ में क्या है? ब्रह्म विद्या उपदेश करता। इसलिए यहां त्रिभुवन गुरु मीशम, त्रिभुवन के गुरु भी है और त्रिभुवन के स्वामी भी है, माने आप देखिए श्री कृष्ण भी ईश्वर ही है। पर गीता में कैसे है? गीता के समय क्या है? ईश्वर है कि गुरु है? गुरु के रूप में। अर्जुन भी कहता है कि माम साधी त्वाम अहम प्रपन्न है, आप तो मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूं, नया काम। अगर आप ईश्वर आपका गुरु बन जाए तो फिर क्या कहना? और जो गुरु आपको उपदेश करता है वो ईश्वर से अभिन्न भी है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, ये कुछ में कोई फर्क नहीं होता है।
गुरु भी स्वरूप से ईश्वर ही है और ईश्वर भी गुरु का रूप लेके उपदेश करता है। ऐसे हमारे पास तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ गुरु रूप में दत्तात्रेय जी है। ये तीनों के रूप में कौन है? दक्षिणामूर्ति है। ये दक्षिणामूर्ति, दत्तात्रेय, ये सब गुरु मूर्ति है। तो यहां ऐसे त्रिभुवन गुरु मीशम दक्षिणामूर्ति देवम कहां बैठे महाराज? वट विटपि समीपे भूमि बागे निशन्नम। तो यहां वट वृक्ष, ये वटका वड़का हमारे गुजरात में वडोदरा नाम है। कैसे नाम पड़ा? हाँ, जहां वड़के वटके वृक्ष वो है वटोदरा, वही है, बहुत है वड़ वहां। वट वृक्ष की बहुत महिमा है, उसको कभी अंत नहीं होता उसका। उसके जो एडवेंटेज रूट से दूसरी जिसको हमने गुजराती में वड़वाई, वो आती जाती है और आगे बढ़ता जाता है। 1000 आदमी नीचे बैठ सकता है, इतना बड़ा वट वृक्ष है भारत में, कलकत्ता में है और वहां चेन्नई में है। तो बड़े बड़े हैं, मैंने भी देखा है। अमेरिका में मैंने देखा, एक जगह पे ऐसा बनाया था उन्होंने, पूरा नीचे बैठ सकते हैं, पूरा हॉल नीचे हो सकता है। और मूल जो पहले का वृक्ष था वो तो कहां चला गया मालूम नहीं है, वो चलता रहता है। तो ये है संसार, ऊर्ध्वमूलम अदशाकम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम् न व्येति। प्राहुः अव्ययम्, ये रहता ही है। ऐसे संसार वृक्ष के नीचे उपसमीपे, जो वृक्ष भिन्न है, ये वृक्ष संसारी है। अब गीता पढ़ लो, 15वां अध्याय में पूरा वर्णन है और उपनिषद में भी ऊर्ध्व मूल अवाक्षाक है, एसो वृक्ष सनातन, ऐसे वर्णन है। अभी जब भी ये लोग दक्षिणामूर्ति की मूर्ति बनाते हैं तो पीछे वट वृक्ष दिखाते हैं और उसके नीचे विराजमान है वृक्ष भिन्न है असंग है, और वहीं ये ऋषि मुनि आके बैठे हैं। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनस सुजात, ये चार। सब में सनक सन सामान्य है। ये चारों ब्रह्म कुमार है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। दूसरी विशेषता इनकी यह है कि अत्यंत बड़ी उम्र वाले होने पर भी उनका शरीर 5 साल के बच्चे की तरह, किशोर भी नहीं बच्चे की तरह रहते हैं। ये तो बच्चे की तरह रहते हैं, बढ़ता नहीं है। और ये पांचों ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए दक्षिणामूर्ति की शरण में आए हैं और दक्षिणामूर्ति चिन्ह मुद्रा के द्वारा ये चारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। इसलिए कहते हैं वटविटिप समीपे भूमि बागे निशन्नम सकल मुनि जनाना ज्ञान दाता रमीशम त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि। जो उपदेश के द्वारा कृतार्थ करते हैं ऐसे दक्षिणामूर्ति को मेरा ये प्रणाम है। अब एक और ध्यान का श्लोक देखिए, चित्र पीछे बोलना, चित्रम वटतरोर मूले।

0: చిన్న సంశయాః వటతరోర్మూలే వటస్య మూలే ये वटवृक्ष के नीचे क्या है आश्चर्यकारक घटना, बहुत चित्रम विचित्रम कभी नहीं देखा गया है। शिष्याः क्या है, वृद्धाः, सब शिष्य कैसे हैं, वयो वृद्ध, बुढ़े हैं सब। और गुरु क्या है, युवा, एकदम युवान, युवान गुरु बुढ़े शिष्य, प्राय क्या देखा जाता है।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।